इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

निलंजना घोष वेदांत की आवाज में ये गाना आपके सैयारा में यानी आपकी गाड़ी में आपके कानों तक किसने पहुंचाया? हाँ जी, गुडी गुड मॉर्निंग सबको, बहुत सारी गुड वाली मॉर्निंग। एंड आप कभी भी जिंदगी में ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर आपको ये ख्यालात आता है कि यार आपका कोई नहीं है, आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, विश्वास कीजिए, आप अपनी बैंक EMIs जो भी पेमेंट बचे हैं वो देना बंद कर दीजिए, एक दो दोस्तों को पार्टी मत दीजिए, वो इतना कॉल करेंगे कि आपको लगेगा पूरी दुनिया आपके रिश्तेदार है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझसे जुड़ा नहीं है, बस लोगों के पेमेंट देने बंद कर दीजिए। देखिए इतने फोन आए, आपको लगे पूरी दुनिया आपको खोज रही है। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आ गया है ऐसी अच्छी बातें लेकर। लेकिन आज अच्छी बात बाहर हवाओं के बीच है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, वरना तो कितना भी नहा के निकलो गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते ही पसीना हो जाता है। सबसे आज मौसम अच्छा है, अब नजर न लगे दोपहर तक सूरज चाचू अपनी ब्राइटनेस बढ़ा दे तो बात अलग है, अभी तक तो ठीक है। 89.6 मिर्ची 1 पर शुरुआत करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci, burka.
2: Hallo? Hallo?
3: Sir, very good evening, man. Bank to photo.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
3: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है
3: आप तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो.
4: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
7: 89.6
8: FM Mirchi 1. It's hot.

0: हाँ जी, सोनी कुड़ी तक लेना, लेकिन सोनी बातें सुन लेने के लिए किसके साथ रहना पड़ता है?
1: मस्त मौला गौरव।
0: यस, आ गया हूँ सुबह सवेरे आपको यही कहने कि गुड मॉर्निंग। और लाइफ में कभी कभी ना हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए कि आप उस चैलेंज को जीतेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होता है ना, हम जब उठकर सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि माँ यार जिंदगी में ये नहीं, अरे यार ये हो जाता तो मजा आ जाता, तो शायद हम सिर्फ कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आप सोचेंगे पहले फोकस किस पे करें। इसलिए कभी भी कंप्लेन वाले इंसान मत बनिए, कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज देखिए, आगे बढ़ते जाइए। मुझे अच्छे से याद है हम हमेशा अपने गोल बदल लेते थे। जैसे ही मुझे क्लास में पता लगता था कि मैं इस नंबर में अच्छा नहीं आ रहा इस सब्जेक्ट में, मैं तुरंत दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करता था और इस चक्कर में 4-5 में ही सिर्फ लाल निशान आते थे, बाकी 6 में मैं ठीक ठाक नंबर पा ही जाता था। जोक्स अपार्ट, प्लीज फोकस ऑन समथिंग दैट इज पॉजिटिव अराउंड यू। नेगेटिव दुनिया में लोग या फिर जिंदगी में नेगेटिव चीजें आपको बहुत मिलेंगी, आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको पीछे छोड़ते जाना है। जैसे मैं रिजल्ट्स को पीछे छोड़ता चला गया जो भी नेगेटिव नंबर आते थे। 89.6 मिर्ची 1, गुड मॉर्निंग, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

कभी कभी कुछ चीजें बंद की जाती हैं वो भी हमारी सहूलियतों के लिए, और फिर शुरू की जाती हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए। अब जैसे कि पिछले दिनों कतर की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया था कि मैरीटाइम नेविगेशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फाइनली मैरीटाइम नेविगेशन यानी कि बोटिंग शिपिंग एक्टिविटीज एक बार फिर से दोबारा रिज्यूम हो गई है।

0: शुरू कर दिया गया है और अब आप कतर में ये कर सकते हैं।
1: #974 the most trending local news of the day।
0: याद रखिए लुसेल सिटी से हमाद पोर्ट और उमहेश से दोहा सलवा, ये लगभग 7 नॉटिकल माइल्स की रेंज में सभी शिप्स और वेसल्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये लेकिन याद रखिए एकदम डिसाइड किया गया है, 7 नॉटिकल माइल्स तक की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और ये तुरंत लागू हो गया, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से ये आपके लिए तैयारी के साथ शुरू कर दिया गया है। और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशंस और कन्वेंशंस हैं उसके तहत अगर आपकी कोई भी वेसल आ रहे हैं तो फिलहाल उसे एग्जेम्प्ट रखा गया है। एंड याद रखिए सेलिंग से पहले, सेलिंग के दौरान सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। हम देखते हैं लोग बड़ी बड़ी यू नो यॉट लेके बोट लेके जा रहे होते हैं अपनी स्पीड बोट के साथ, तो मुझे लगता है यार एक सपना ये भी तो है अपनी एक बोट हो, जब मन करे चाई छप्पा चाई पानी में जाई, मजा करे मौज करे, यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए। फिलहाल आ गया है स्मॉल गौरव सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग कहने एंड ढेर सारी बातें बताने और गाने सुनाने। अब सुबह हो तो गई है तो मिक्का पाजी पता नहीं क्यों बोलने सुबह होने ना दे। इट्स हॉट
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मेरी आंखों में देखो लेकिन सूरज चाचू को अपनी आंखों से मत देखो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अनुप जैन की आवाज में सुबह सवेरे गाना खत्म हुआ और मस्त मौला गौरव अपनी बातें लेकर एक बार फिर से आ गया है। गुडी गुड मॉर्निंग। और वेदर ये तो छक्के छोड़ा दे रहा सर।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: हालात बिल्कुल बदले नहीं है, जो कल था वैसे ही आज है। ह्यूमिडिटी जरूर आज कम थी सुबह सवेरे की। अगर बात करें दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर विल रीच अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस, दिन का मिनिमम अराउंड 34 रहेगा। बड़ी बात यह है कि आज हल्की फुल्की हवाओं की रफ्तार मिल रही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं। यस, ये आपको थोड़ा अच्छा फील कराएंगी सुबह और शाम को। दोपहर की तो बात ही नहीं कर रहा। ह्यूमिडिटी हालांकि 45% है पर क्योंकि हवाएं चल रही है इसलिए मौसम ठीक ठाक लगता रहेगा। फिलहाल बॉडी को हाइड्रेट रखते रहिए, पानी पीते रहिए, कोशिश कीजिए कि गाड़ी की पार्किंग जो है वो शेडेड पार्किंग कहीं मिल जाए, जुगाड़ में तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी गाड़ी अवन तंदूर का काम तो कर ही रही है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because he is, his ideas come from where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि, you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on मिर्ची. It's hot.
3: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: अरे कितना भी मेकअप कर लीजिए, ऊपर वाले ने जो खूबसूरती दी है वही सत्य है। गौरव आपके साथ सुबह सवेरे 7:04 के करीब का टाइम होने आ रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी कह लें, वार्निंग कह लें, ये आई है कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आपके लिए।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, बता दें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने मेडिकल और कॉस्मेटिक यूज में आने वाले एक्सोसोम्स इंजेक्शन के लिए आपको स्ट्रिक्टली वार्न किया है। यस, इस इंजेक्शन के खिलाफ आपको स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है। एक्सोसोम इंजेक्शन ये आपको खूबसूरत बनाने के लिए, यंग बनाए रखने के लिए बड़ा काम तो आता है, लेकिन क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पर वही गहरा फर्क पड़ सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री के फार्मेसी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 19 जुलाई यानी कि देर शाम परसों ये लिस्ट इशू कर दी थी, जो कल सब जगह आई। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में समझें कि कुछ एक्सोसोम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रूप में प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इससे आपकी हेल्थ को, आपकी सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है। और इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो कि हमारे कतर में एक तरह से एकदम स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है आपको एक्सोसोम्स इंजेक्शंस के लिए, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड आई एम श्योर जब आपकी सेहत की चिंता कोई और करने लगे तो समझ जाइए मामला ज्यादा गंभीर है, और इसलिए कोशिश कीजिए इस तरह की चीजों से दूर रहिए। अच्छा खाइए, पीजिए, घूमिए, वॉक कीजिए, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कीजिए, वीकेंड पर इनके साथ ही टाइम गुजारिए, क्योंकि ना जिंदगी में असली जो रौनक है चेहरे पे वो दोस्तों यारों और अपनों के ही साथ आती है। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
7: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सिलेक्ट ऑर्नामेंट्स। विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे। कंडीशंस अप्लाई।
8: हाउ इज द जोश?
9: हाय सर।
8: हाउ इज द जोश?
9: हाय सर।
10: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में आवन चावन दे। और ऐसे ही तो होता है, हम एक बार शो पर आ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि चार घंटे हम ही आपका मन बहलाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड बारी आ गई है कि कुछ आपसे सवाल जवाब हो जाए, और देखिए आपका नॉलेज बॉलीवुड को लेकर बना हुआ है कि बिगड़ गया है जी। वैसे बॉलीवुड से याद आया, आजकल हमारे अपने रणबीर कपूर बड़े चर्चा में है, एक फिल्म को लेकर अनाउंस कर दिया गया है, वो उसके मेन स्टार कास्ट है। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बंदे ने मेहनत करी और यहां तक पहुंचे, लेकिन आपको इनकी डेब्यू फिल्म का नाम याद है? रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम क्या आपको याद है? क्योंकि जो इनकी इस फिल्म में थे, जो इनको लेकर आए थे, उनकी तो आजकल सेहत थोड़ी खराब है। हाँ जी, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं तुम्हारी खराब होगी, मेरी तो बिल्कुल ठीक है। 5001896 पर बताना है कि रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था। 5001896 मस्त बोलो। गौरव इंतजार कर रहा, वॉइस नोट में अपने जवाब भेज दो। क्या है गौरव, आप जो सवाल पूछ रहे हो, यार हमें पता है यार, रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म अमा ये थी यार, फलाना फिल्म थी, जो भी फिल्म आपको याद है 5001896 पर। जरा हम आपके बॉलीवुड नॉलेज टेस्ट कर लें। 89.6 मिर्ची 1 पर इंतजार कर रहे हैं, वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए कि रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था। ए चैट जीपीटी गूगल, कुछ नहीं करना है, बताओ अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाकर। मिर्ची थॉट,
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: नैन मटका तो चल रहा है, लेकिन हमारे साथ गानों का कान मटका आप एंजॉय कर रहे हैं।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ गुडी गुड मॉर्निंग, जहां पर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए लाइफ में ना खेल सवाल जवाब इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपके दिमाग को भी दुरुस्त रखता है और आपको एक विनर वाली फीलिंग देता है। जैसे कि आज मैंने सवाल पूछा कि रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था और धड़ाधड़ आंसर आ गया।
2: हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म की नाम सांवरिया।
3: हाय गुड मॉर्निंग गौरव जी, इट्स अब्दुल रहमान विद यू। रणबीर कपूर डेब्यू फिल्म वाज सांवरिया।
4: ओके गौरव, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सभी? दिस इज अहमद हियर। रणबीर कपूर का डेब्यू मूवी है सांवरिया, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली एंड लीड एक्ट्रेस सोनम कपूर। सोनम कपूर का भी ये डेब्यू फिल्म ही था।
0: अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, ये तो वो थे जिन्होंने भेजा अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आंसर, एंड द राइट आंसर इज सांवरिया। एंड यस, सोनम कपूर का भी डेब्यू था, सलमान खान का इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल भी कह सकते हैं। वेल, इसके अलावा थैंक यू करना चाहेंगे उमेर भाई को जिन्होंने सही जवाब दिया है, साक्षी को जिन्होंने लिखा है सांवरिया, एंड साथ ही साथ नितिन को थैंक यू जिन्होंने लिखा है सांवरिया, विष्णु भाई थैंक यू आपने लिखा सांवरिया, फारूक साहब थैंक यू सो मच सांवरिया, यस मंजीत सांवरिया, आशिक से शेट्टी भी एकदम सही है, ये दिस इज सांवरिया। एंड अगर बात करें यस विनय थैंक यू सांवरिया लिखा है आपने, एंड शबीर भाई यस इट इज सांवरिया। वेल, इतने सारे लोग जब आंसर भेजते हैं समझ में आता है कि बॉलीवुड का ज्ञान हमसे ज्यादा और किसी को है ही नहीं। मिर्ची इट्स हार्ड।
5: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: एंड नाउ सांवरिया का वही टाइटल ट्रैक शैल हादा की आवाज में आप पर मिर्ची की तरफ से।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
2: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
1: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वाज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
3: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
4: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
5: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
9: entertainment. Qatar का number one radio station.
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. It's hot.

अरिजीत सिंह हर्षदीप कौर की आवाज में ये गाना फिल्म रईस से किसने सुनाया? मैंने गाना सुना दिया, लेकिन अब रईसों के बारे में बात होगी। यस, और रईस कैसे बनता है इंसान? मेहनत कर, सही विजन रखकर, और अगर उसके साथ कोई टीम काम कर रही है तो उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने वाला ही आगे जाकर बड़ा आदमी बनता है। एंड ऐसी एक कतरी बिजनेस लीडर्स की लिस्ट जो है वो CNBC अरेबिया पर पब्लिश हुई। हाँ जी, ये टॉप 100 बिजनेस लीडर्स हैं, एंड मिडिल ईस्ट में जो भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनी है। CNBC अरेबिया ने इसे पब्लिश किया है, एंड कतरी बिजनेस लीडर्स इस लिस्ट में जो अपना नाम ला पाए हैं वो है अब्दुल्ला मुबारक अल खलीफा, ये ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कतर नेशनल बैंक ग्रुप के। बासिल गमाल, ये भी ग्रुप CEO है कतर इस्लामिक बैंक के। अजीज अल उथमान फकरू साहब, ग्रुप CEO ओरिडो ग्रुप। इसके अलावा शेख हमद अब्दुल्ला जासिम अल्थानी, CEO वोडाफोन कतर। इंजीनियर अब्दुल्ला फादुल्ला अल सुलेती, यस ये हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कतर गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी नखलात। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल बासित अहमद अल शाइबी, ये भी हैं CEO कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक के। इंजीनियर अहमद मोहम्मद अल तईब, ग्रुप CEO बरवा रियल स्टेट कंपनी। शेख मोहम्मद बिन फैसल अल थानी, वाइस चेयरमैन एंड MD अमाल कंपनी। एंड मोहम्मद इस्माइल अल इमादी, ग्रुप CEO लेशा बैंक। ये सारे के सारे इस लिस्ट में आ पाए हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। इनकी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो ग्रोथ पर है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वो भी ग्रोथ पर है। इसके अलावा मार्केट में इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ा हुआ है, हाँ जी, और वो ऑलमोस्ट ज्यादातर सेक्टर्स में आपको दिखाई पड़ता है। एंड इसके अलावा इनोवेशन, गवर्नेंस, रेजिलेंस इस कंपनी की कैसी है, इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। एंड विश्वास कीजिए, वही ट्रू लीडर होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। वो जानता है कि उसकी टीम में क्या कमियां हैं, उस पर वो मेहनत करता है और फिर आगे बढ़ता है। मेरे बॉस मुझ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है मैं थोड़ा कम हूं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो हमारी कंपनी भी एक दिन बहुत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, नाम आएगा हमारा बिजनेस में कभी ना कभी। 89.6 मिर्ची 1, जिनका आया उनसे मिठाई लीजिए। इट्स हॉट।

0: Mirci Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है.
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए. व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तबाही विशाल मिश्रा के आवाज में मूवी टॉक्सिक का आपके कानों तक पहुंचा दिया और आपके साथ फिर से आ गया। गुडी गुड मॉर्निंग आपके साथ सुबह सुबह, घड़ी का टाइम 8:06 की तरफ बढ़ता हुआ।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, और अब आपके साथ आ गए हैं तो बातों ही बातों में बहुत सारी बातें तो कर ली, लेकिन पैसों की ताकत की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल भैया इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी यही तो है। बहुत ही अच्छे से आपको अगर आईपे ऐप पे डाउनलोड कर यू नो घर पैसे भेजने हैं तो सहूलियत के साथ मिल जाता है। इस गर्मी में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। 26 रुपए 38 पैसे भारतीय मुद्रा में मिल है। यस, 1 कतरी रियाल के अगेंस्ट इंडियन रुपीज 26.38। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज की, 92.12 श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.31, यस 76.31 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीस का रेट छ दाजो 42.22 का भल छ रेटर बाइनी। हां जी, 42.22 का रेट छ हजुर। अगर घर भेजना तो राइट टाइम छ। अगर इसके बाद हम बांधु बांग्लादेश टका की बात करेगा दादा, एकटा कतरी रियाल के बदले 33.89 तो 33.89 एटा बांग्लादेश टका तो रेट छ। लो मस्त मोलो गौरव इतने कहेगा, पैसे जुटाओ, घर भेजो आईपे ऐप के थ्रू, ताकि आप आराम से बाकी चीजों को भी यूज कर पाओ। यस, आईपे ऐप देता है आपको बहुत सारी सहूलियतें, जहां पर आप इसी ऐप में वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन भी पा जाते हो, जिससे और इजी हो जाता है आपको घर पैसे भेजना। मिर्ची इट्स हॉट,
3: लाया आई पे बेस्ट एक्शन रेट्स, भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे।
1: और अब से थोड़ी देर में एक बार फिर से सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे, और कुछ क्रिकेट जगत से। हां जी, ट्यून रहिए मस्त मौलक। और

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Hello?
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100-0813।
7: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
8: Tariq milti rahi hai, lekin insaaf nahi mila milad.
9: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
10: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन,
13: इट्स हॉट।
14: उड़ाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: और बिल्कुल ऐसे ही फुटबॉल खेला स्पेन ने, अर्जेंटीना को हरा कर पूरी दुनिया में अपने आप को विजेता बनाया। यस, एंड फुटबॉल में बहुत कुछ होता है, लेकिन अब फाइनली फीफा में बहुत सारी चीजों को लेकर इंक्वायरी प्रोब भी होगा। एंड ऐसे में फाइनल मैच में जो अचानक से फुटबॉल से रेसलिंग बदला था, उसमें पैराडाइज कितने गलत हैं, इस पर एक इंक्वायरी हो रही है। बट मैं सच कह रहा हूँ यार, जिस तरह से एकदम मोहल्ले गुंडे स्टाइल में मारपीट किए परदे साहब ने, मुझे लगता है परदेश पर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा सस्पेंशन बैन लग सकता है। इन सब के बीच बस मॉल गौरव आपके साथ, गुडी गुड मॉर्निंग एंड सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। एंड सवाल बड़ा ही सिंपल है, स्पेन ने यूं तो इस बार कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में हुए वर्ल्ड कप में अपनी विक्ट्री हासिल की और विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन आप बता सकते हैं इससे पहले जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हो रहा था? यस, आपको यही बताना है कि जब स्पेन इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप जीता था तो वो किस देश में वर्ल्ड कप हो रहा था, यही है मेरा सवाल, यानी कि होस्ट नेशन कौन सी कंट्री थी। 5000196 पर अगर आप हैं स्पोर्ट्स लवर, फुटबॉल को करते हैं प्यार, तो ये जवाब आपको पता होना चाहिए मेरे यार। 5000196 पर बताइए कि जब स्पेन ने इससे पहले वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि इस बार तो यूएसए कनाडा मैक्सिको में जीता है, लेकिन इससे पहले जब वर्ल्ड कप जीता था तो वो कौन सा देश था जहां पर यह वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था। 5000196 पर मस्मोल गौरव आपके जवाब का इंतजार कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके अपने जवाब भेजिए। जवाब भेजने के लिए आपको बताइए गौरव के साथ वॉइस नोट, ताकि पूरे कतर को आपका जवाब सुनाई दे। मिर्ची थॉट,
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

ਨੜਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ।

0: क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया है सर ने। यस, एक मैसेज आया जिसमें लिखा है फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना ईयर 2022। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इससे पहले स्पेन ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो वो होस्ट नेशन कौन सा देश था। भाई साहब ने क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। खैर, जो जवाब आए आइए सुनते हैं।
1: मॉर्निंग गौरव, इट वाज साउथ अफ्रीका, स्पेन वन द वर्ल्ड कप।
2: ओके, जोनसन वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका में।
3: ओके, हे गौरव, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
3: द आंसर इज साउथ अफ्रीका, इट वाज इन 2010।
0: यस,
3: दिस इज प्रिंसन।
0: ओके, थैंक यू प्रिंसन।
3: थैंक यू गौरव।
0: थैंक यू, थैंक यू।
4: लास्ट टाइम इन 2010 व्हेन स्पेन वन द फीफा वर्ल्ड कप, इट वाज होस्टेड इन साउथ अफ्रीका।
0: Yes, it was South Africa and उसी वर्ल्ड कप से तो गाना था जो शकीरा को पूरी दुनिया तक लोगों ने पहचान लिया था। वाका वाका ये या दिस टाइम फॉर अफ्रीका। बिल्कुल मिलाकर राइट आंसर वाज साउथ अफ्रीका। एंड ये बताकर अब आगे बढ़ते हैं। जे स्टार आ गए, हर बात के लिए नाना नाना करते हैं। मिर्ची थॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
6: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

भाई समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो लूटा हुआ ही महसूस करोगे। इसीलिए कहता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अपग्रेड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फोन पे सॉफ्टवेयर आता खड़ा अपडेट मार देते हैं ना, है फोन को रिस्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही अपने लिए भी कुछ सोचा करिए। और सोचने की बात से याद आया कि टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स जब एक साथ आ जाएं तो भाई बच्चों के लिए बिल्कुल सोचना ही पड़ता, उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है कतर के सिद्रा मेडिसिन हॉस्पिटल ने। #974974 आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिद्रा मेडिसिन के पेडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डॉक्टर्स इजीली बच्चों के एक्सरेस को और फास्ट रीड करने में आगे बढ़ रहे हैं। एंड प्रोफेसर खालिद अंसारी जी के मुताबिक इस AI टूल से इमरजेंसी केसेस को और जल्दी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वेल, कुल मिलाकर सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि बच्चों का जो वेटिंग टाइम है डॉक्टर से मिलने वाला वो बिल्कुल कम हो गया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट और रेडियोलॉजी टीम के बीच एक कोऑर्डिनेशन है जो बहुत बेहतरीन तरीके से और ज्यादा फास्ट हो गया, और इससे फास्ट तरह से डायग्नोस हो पा रहा है चीजें, ट्रीटमेंट उनको जल्दी मिल रहा है और एक्यूरेसी के साथ मिल रहा है। और सबसे प्यारी बात यह है कि छोटे बच्चों का जो दर्द है वो अब डॉक्टर साहब और जल्दी समझ पा रहे हैं। ये सब कुछ AI एंड डॉक्टर के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। यस, और चाहे AI कितना भी एडवांस हो जाए, हम ये मानते हैं कि सेंटर तो हमारे डॉक्टर साहब ही रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर की जो सुपरविजन है वो एक्सपीरियंस से आती है। AI बस बता सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है ना। और शायद अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की सेहत का और ज्यादा ख्याल रखेगा, और डॉक्टर्स की सुपरविजन और AI की फास्ट ये टेक्नोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन अब आने वाले टाइम में सिद्रा के पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चीजों को और आसान बनाएगा। बच्चों का दर्द हम जल्दी समझ पाएंगे। एंड ऐसे ही दुनिया में AI के साथ जब आप डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी के साथ आगे मिक्स होंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छे से लोगों की सेहत की देखभाल होगी। वेल, थैंक यू फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्च एट सिद्रा पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आने वाले टाइम में ये और भी डिपार्टमेंट में होगा, आई एम वेरी श्योर। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
7: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
8: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
9: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
8: अभी कॉल करें 3100813।
10: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
11: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
12: कैसे रुक सकता है?
13: Qatar ka number one radio station.
14: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: संजू राठौर के गाने गजब एनर्जी लाए,
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव,
0: हर गाना हिट हो जाए। 89.6 मिर्ची वन पर सुबह सवेरे आपके साथ है, गुडी गुड मॉर्निंग। 9:07 से ज्यादा
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल मस्ट फॉलो गौरव आपके साथ है, और कतर के भाई ग्लोबल कनेक्टिविटी नेटवर्क में ना, यानी कि इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा और फास्ट चेंज आने वाला है। यस, हम आपको बता दें कि कतर का इंटरनेट स्पेस और डिजिटल जो इकोसिस्टम है वो सुपर फास्ट और ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है। CRA यानी कि हमारे जो कतर की कह सकते हैं कम्युनिकेशन रेगुलेटर अथॉरिटी है, रेगुलेशन अथॉरिटी, उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए कुछ नई गाइडलाइंस रेगुलेशन इशू कर दी है, और इसके अलावा अब सबमरीन केबल्स जो कतर को पूरी दुनिया के ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ता है ना, उनका एक्सेस सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए और इजी, क्लियर और प्रेडिक्टेबल हो गया है। यानी कि जितने भी अब सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने इस तरह के सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए क्या नई गाइडलाइंस को लेकर अपने स्टेशन बढ़ा सकते हैं, उसमें कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है, लेकिन अगर आप टेक वर्ल्ड को जानते हैं तो क्लाउड सर्विस, डेटा सेंटर्स और एडवांस डिजिटल एप्स, ये जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए ही लाइसेंस प्रोवाइडर को अपनी प्राइसिंग टर्म्स और सर्विसेज ट्रांसपेरेंट पब्लिश करनी होगी, और मार्केट में तब कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, हम कंज्यूमर्स का। तो भाई आने वाले टाइम में इंटरनेट फास्ट भी होगा और हो सकता है और ज्यादा अफोर्डेबल, पॉकेट को फ्रेंडली, ये सब कुछ होगा। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारे कतर की कम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस अप्लाई होने जा रहे हैं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: हाँ बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1.
12: It's hot. It's hot.

0: लेकिन अगर आप हमारे कतर में हैं तो आप कतर में अजगल से कभी रूठ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कतर को हमेशा ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
1: #974974
0: और इसी की बात है तो बता दें कि 2025 की जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट सामने आई, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि किस तरह से कतर में पब्लिक ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जा रहा है। और इस दौरान साल 2025 की अगर बात कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट में आया है कि 12 पब्लिक पार्क्स एंड 5 पब्लिक प्लाजा जो हैं इस दौरान कतर में बेहतरीन तरीके से रेनोवेट किए गए या नए पार्क्स बनाए गए, एंड 12 पार्क्स आउट ऑफ प्लान टोटल 39 हैंड ओवर हो चुके, एंड 12 जो 5 प्लाजा उसमें से हो गए, यानी कि 12 टोटल पब्लिक प्लाजा बनने उसमें से 5 हैंडओवर हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये जितने बचे प्रोजेक्ट्स हैं ये भी पूरे होने जा रहे हैं। ग्रीन स्पेसेस का बढ़ना ये बता रहा है कि कतर में म्युनिसिपैलिटी को जब भी कोई ऐसी जगह दिखती है जहां पर मैदान है और वो कहीं ना कहीं अजगल उस चीज को ब्यूटिफाई करते हुए मेहनत करता है और हमारे कतर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी मेहनत दिन रात लगे हुए हैं। और इसके लिए बाकायदा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उन सभी अजगल स्टाफ को, म्युनिसिपैलिटी के लोगों को पहले तो जोरदार तालियां। और अभी ये शुरुआत है, कहा यही जा रहा है कि कतर में अभी और ढेर सारे ग्रीन स्पेसेस बढ़ने वाले हैं और रोड जो है, जो कतर की बहुत सारी सड़कें हैं उनका ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ऑन है और आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले टाइम एकदम चमचमाती सड़कें। क्योंकि मैं कहता हूं जब भी बात कतर के सड़कों की, पार्कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लेकर उनके ब्यूटिफिकेशन की आती है तो उनके लिए ब्यूटी पार्लर बनकर एकदम बेहतरीन तरीके से टकाटक काम कर रहा है हमारा अजगल। एंड आई एम वेरी श्योर कतर डिजर्व्स द बेस्ट और वो काम कर देते हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर म्युनिसिपैलिटी और अजगल की यारी पर अगला गाना मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के

0: कब नहीं समझोगे?
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची वन पर जिंदगी कुछ बताए ना बताए मस्त मौला गौरव सुबह सवेरे आके बहुत सारी बातें बताता है। अब देखिए जैसे ये लेटेस्ट वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ जहां पर हमारे कतर में आरएसएल ग्रुप उन भाइयों के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आए हैं जिनके पास कतर में ड्राइविंग लाइसेंस है और वो डिलीवरी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, किसी बात से कहीं और पुरानी कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनके पास मौका है आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़कर स्टेबल इनकम, घर वालों की मेहनत के साथ साथ, अपनी मेहनत के साथ साथ घर वालों को पैसे भेजने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी यहां सुधार पाए। और उसके लिए एक नंबर है जिस पर वो कॉल कर सकते हैं, 3100813। आई रिपीट, 3100813 ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं एंड आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़कर डिलीवरी राइडर्स की जॉब पा सकते हैं एंड इसी के साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा और इजी बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका फायदा उठाइए एंड ऐसी कंपनीज जब

0: जी हाँ, आपकी लाइफ में तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और ऐसी बातें रेडियो पर कभी कभी किसी की जिंदगी बना देती है। यही हमारा काम है, बस दुआ में याद रखिएगा अगर कुछ अच्छा हो जाए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी आ गए मस्त मौला गौरव फिर से उड़ चला। अब मैं उड़ के जाने वाला हूँ। यस गाना खत्म हुआ और मेरे जाने की बारी आई। लेकिन याद रखिए इंसान जिंदगी में कितना भी दूर चला जाए अपनों से दूर नहीं जा पाता। तो कल लौट के फिर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच इंपॉर्टेंट बात यह कि मौसम एक बार फिर से जबरदस्त गर्मी का प्रकोप लेकर आया है और हमें और आपको समझना है कि पानी कुछ भी हो जाए पीते रहना है भाई। आफ्टर ऑल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, कतर अपने सबसे हॉटेस्ट फेज में चल भी रहा है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि बस कुछ दिनों की और बात है, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी पर टेम्परेचर नीचे जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे फिलहाल की बात करें राइट नाउ सुबह 10 भी नहीं बजे अभी एंड टेम्परेचर 42 छू चुका है एंड दिन का मैक्सिमम 44 जाने वाला है, मिनिमम अराउंड 34 आने वाला है। ह्यूमिडिटी की बात करें यस बहुत तेज़ी से ह्यूमिडिटी बढ़ती है लेकिन हवाओं की रफ्तार आज बनी रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास अभी भी हवाएं चल रही हैं। तो आराम रहिए, पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखिए क्योंकि अपने ख्याल के साथ साथ गर्मी में गाड़ी का ख्याल रखना भी जरूरी है। टाइम टाइम पर टायर्स में हवा हो ये मेंटेन रखिए और गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर कराते रहिए। इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक है। मैं स्मॉल अगर ले रहा अलविदा, लौटेगा कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए आप मिर्ची पर रहिए। इट्स हॉट, बाय बाय।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: मिर्ची घड़ी में सुबह के 10:01 और मीठी मिर्ची की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: अरे कुछ फिल्में ना आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट लेके आती है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, अगर आप नो एंट्री के फैन रहे हैं तो आपको पता होगा कि दाल चावल के अलावा लोग जो हैं वो बिरयानी की तलाश में भी बाहर निकलते हैं लेकिन फिलहाल तो मैं बिरयानी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो दाल चावल अपने कंफर्ट फूड की बात कर रही हूँ यार, जिससे मैं पर्सनली कभी बोर नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट। आप डेली बिरयानी खाकर तो मजा नहीं कर सकते ना, पेट तो कभी तो खराब हो ही जाएगा आपका। ठीक वैसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट दे जाती हैं, आप उन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, बस वो फिल्म लगाएंगे और एक बोलते ना कि यू गो बैक टू योर होम, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए वो कंफर्ट फिल्म कौन सी है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। But all of that in a while, till then you stay tuned to Mirchi. मैं हूँ आपके साथ श्रुति, it's hot. Yeah. Yeah.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: भाई कुछ फिल्में ना मम्मी के प्यार के जैसे होती हैं, एवरग्रीन फॉर यू।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और जैसे आपकी मम्मी का प्यार आपके लिए अलग है, वैसे ही हर इंसान की मम्मी का प्यार उसके लिए अलग है। एंड ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट भी कुछ इसी तरीके से चलती है यार। क्योंकि अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो दूसरे को वो फिल्म पसंद हो जरूरी नहीं, बट उसकी पसंद कुछ और भी हो सकती है। ये तो बड़ी ही बेसिक सी बात कर दी श्रुति, लेकिन कभी कभी हम ये बेसिक्स भूल के सामने वाले को जज करने लगते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा है कि भैया आपके पसंद की बात करेंगे। आई वेंट डाउन टू माय ऑफिस पीप्स और मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कौन सी फिल्म है उनके लिए जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते, हर बार उसी लेवल पे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं वो। सो अर्जित इज विद मी।
3: गोविंदा कि कोई भी फिल्म आप उठा लो तब आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब शायद आपको एम्बैरेसिंग स्लैश क्रिंज लगे। प्लस डायलॉग्स डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली और एक टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, पता नहीं वो आदमी क्या करता था, एक पूरी फिल्म ऐसे बात की उसने। सो गोविंदा और गोविंदा की सारी फिल्में।
0: क्या बात है, आई आई कैप्टन, मुझे भी गोविंदा की कोई भी फिल्म किसी भी वक्त दिखा दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट अगर कोई लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है तो हम गोविंदा की फिल्मों पे मूवी मैराथन कर सकते हैं, ठीक है? ओके वैसे अभी और भी कुछ दोस्तों से बातचीत की है अबाउट द सेम, बट वो कॉन्वर्सेशन लेकर आऊंगी कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो, प्यार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार से कभी आपका मन नहीं भर सकता।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी होती है जिससे उसका मन कभी भी नहीं भर सकता। और आज आपकी कुछ ऐसी ही फेवरेट वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, नाउ कृष्ण इज विद मी। बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो तुम कभी भी देख सकते हो?
3: ये दो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। पहली फिल्म है पार्टनर, क्योंकि उसमें गोविंदा और वो सलमान की वो जो केमिस्ट्री पूरी रहती है ना, बड़ी मजेदार सी थी। और वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो हमेशा खुशी मुझे उस मूवी को देख के होती है। और दूसरी फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, तानी पार्टनर, जो वो पूरा केमिस्ट्री रहता है, आह हा, मजा ही आ जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे उस पूरी मूवी का लगता है, सूरी पापे का जो दोस्त होता है बॉबी, मुबारक बधाइयां पचा के सूरी पापे को जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्रोसेस बड़ा मजेदार रहता है। तो ये दो फिल्म मैं कभी देख सकता हूँ, मजा आता है, दिल खुश होता है।
0: तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी उस फेवरेट फिल्म की बात करते करते ही कितने अच्छे वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो फटाक दैट चिटाक आप भी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट कीजिए और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे जरा बताइए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ 2 फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
4: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज, हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड। एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
3: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: entertainment. Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियां हैं वो डिसाइड की जा रही है गुस्सा करने वाले लोगों के मद्देनजर। जिसमें पहली प्रजाति का जो इंसान है, इसको गुस्सा आता है तो वो शांत भी होता है। मतलब ये अपने आप को थोड़ा सेक्लूड करेगा फ्रॉम दैट सिचुएशन और अपने आप को धीरे धीरे करके, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है ऑफ कूलिंग डाउन, ये उस प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के महानुभाव है ना, कभी कभी इनका दिमाग इस लेवल पे फिर जाता है कि ये गुस्सा करके खुद शांत तो हो जाते हैं ऊपर ऊपर से, बट अंदर से इनके अंदर वो गुस्सा इस लेवल का भरा होता है ना कि ये सोच लेते हैं कि आज तो कोई भिड़े, बस कोई भिड़े मेरे से, जो मेरे साथ लगेगा उसकी तो ऐसी की तैसी। वैसे मैं इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए जानती हूँ क्योंकि कभी कभी आई स्विच टू द सेकेंड कैटेगरी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: भैया इसके मजे तो अलग लेवल के हैं यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल वेल, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट डांस फेस ऑफ यार। हाँ, जब दो टीम डांस का मुकाबला करती हैं, ऐसा तो हमारी शादियों में भी होता है, इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एपिक डांस फेस ऑफ की, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट द सॉन्ग DTPH। ओह, नहीं समझ पाए, दिल तो पागल है का इंस्ट्रूमेंटल यार, द डांस ऑफ एनवी। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 1997, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा, एंड इस फिल्म में शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल्स में थे। बाकी म्यूजिक इस मूवी में था उत्तम सिंह का, एंड स्पेसिफिकली अगर इस गाने की बात करें तो भाई साहब, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू शामक दावर जिन्होंने इस मूवी की कोरियोग्राफी की है। माइंड यू, इस मूवी के बाद से ही शामक रोज टू फेम विद हिज अनकन्वेंशनल डांस फॉर्म्स। एंड एक बात और बताना चाहती हूँ, इट वॉज शाहरुख खान जिन्होंने शामक दावर को पर्सुएट किया था टू वर्क इन दिस फिल्म, एंड रेस्ट ऑफ कोर्स वी नो इज हिस्ट्री फॉर शामक एज अ कोरियोग्राफर। खैर, आई एम श्योर, 110% श्योर इन फैक्ट, कि आपने इस गाने पे कभी ना कभी अपने स्कूल कॉलेज या कभी तो डांस फेस ऑफ जरूर किया होगा। उसके कुछ इंटरेस्टिंग लम्हे मुझसे शेयर कर सकते हो MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट
1: विद मिर्ची, फ्रेश माल,
3: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रुपीट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Burka, burka. Na vjetva la burka.
2: Milci, burka.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. My bank to put on.
3: हाँ बोलिए
4: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
4: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: मैं पागल पागल है क्या?
4: आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
8: 89.6 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
9: It's hot.

0: में, कॉलेज में, शादियों के फंक्शंस में, हर जगह फेमस है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल माई डियर बाबू मोशाय, मैं डांस फेस ऑफ्स की बात कर रही हूँ जो काफी ज्यादा फेमस है हम सब के बीच में। एंड ऑफकोर्स वी नीड टू थैंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर द सेम, क्योंकि इतने एपिक डांस फेस ऑफ्स हमने देख लिए हैं बिग स्क्रीन पे कि भाई उसको अपने लाइफ में उतारने का तो मन हो ही जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एपिक डांस फेस ऑफ्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट DTPH यानी दिल तो पागल है का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। अब नंबर दो पे बात करते हैं साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने, जिसमें माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड शाहरुख खान लीड रोल्स में थे। एंड यू नो ये पर्टिकुलर गाना जो है डोला रे डोला, उसको लिखने के लिए एक हफ्ते लग गए थे। द रीजन बीइंग कि इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी मोहतरमाएं इस मूवी में, इस पर्टिकुलर गाने में साथ डांस करने वाली थी। एंड हाउ कैन वी नॉट थैंक सरोज खान फॉर द सेम। गाने में जिस डांस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कथक एंड भरतनाट्यम। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं अबाउट द सॉन्ग दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी। बाकी इस गाने में अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने जो समा बनाया है, वो समा हर दूसरी शादी में देखने को मिल ही जाता है। कॉम्पोजिशन है इस गाने में प्रीतम दा का एंड लिरिक्स हैं कुमार के। बाकी रणबीर और दीपिका की जोड़ी तो इस गाने में कुछ ज्यादा ही अलग दिख रही है। एंड आई एम 110% श्योर आपके डांस फेस ऑफ वाले प्लेलिस्ट में ये दोनों गाने तो जरूर होंगे, है ना? खैर अभी और ऐसे ही दो गानों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन वाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।
3: Let's go.

0: मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भैया इसके अलग ही नशे हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओ हेलो माय डियर बाबू मोशाय, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं डांस फेस ऑफ के नशे की बात कर रही हूँ जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से निकल के हमारे जिंदगी में भी आ चुका है। तभी तो हर दूसरी शादी में आपको लड़के वालों और लड़की वालों की तरफ से डांस फेस ऑफ देखने को मिलता ही मिलता है। तो पांच का पंच हाजिर है मेरे दोस्त। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दिल तो पागल है का इंस्ट्रूमेंटल, देन वी टॉक्ड अबाउट डोला रे डोला, तीसरे नंबर पे हमने बात की दिल्ली वाली गर्ल फ्रेंड के बारे में, अब नंबर चार पे बात करते हैं काला चश्मा। हां जी, नित्या मेहरा डायरेक्टोरियल बार बार देखो, जो साल 2016 में आई थी, उसका गाना काला चश्मा, जिसको ओरिजिनली अमर अर्शी ने गाया था, कंपोज किया था प्रेम हरदीप और काम ढिलन ने। एंड यू वोंट बिलीव, ये गाना ओरिजिनली 1991 में रिलीज हुआ था, जिसको फिल्म बार बार देखो के लिए रिक्रिएट किया बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। वैसे रिक्रिएशंस कुछ खास पसंद नहीं है मुझे, बट दिस सॉन्ग वॉज वर्थ इट। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फेस ऑफ की। यार, जय जय शिव शंकर फ्रॉम द मूवी वॉर, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। इस गाने को स्पेसिफिकली देख के ना बड़ी टेंशन हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी कि आखिर हम देखें तो देखें किसको। बाकी बेनी दयाल और विशाल ददलानी के म्यूजिक ने तो अलग ही लेवल सेट कर दिया था इस गाने का। एंड टॉकिंग अबाउट द कोरियोग्राफी, हैट्स ऑफ टू बॉस को जिन्होंने ऋतिक और टाइगर को एक साथ स्क्रीन पे इतना अमेजिंग दिखा दिया। खैर, अगर मेरी इस डांस फेस ऑफ वाले लिस्ट में आप भी कोई गाना ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट माय फ्रेंड। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करो और वहां अपना गाना मुझे भेजो। टिल देन एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Art.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

एक ऐसी फिल्म जिसका हर लीड कैरेक्टर नेगेटिव था। आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया देन लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अब्बास मस्तान डायरेक्टोरियल फिल्म रेस बाबू मोशाय, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे एक्टर्स थे। सो यस, इस फिल्म के जितने भी लीड कैरेक्टर्स आपको नजर आए हैं वो सारे नेगेटिव शेड के हैं, मतलब कोई एक मेन विलन नहीं था, सारे कहीं ना कहीं विलन का किरदार निभा रहे थे। इनफैक्ट अनिल कपूर ने पहली बार अपने करियर में अब्बास मस्तान के साथ काम किया था, और तो और फिल्म का एक एपिक नंबर ख्वाब देखे झूठे मूठे, ये गाना फिल्म के साउंडट्रैक के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। इन शॉर्ट ये गाना फिल्म को अलंकृत करने के लिए बनाया गया था, आई मीन उस बेसिस पे थोड़ा और लोग देखेंगे या फिर इंट्रीग होंगे अबाउट द मूवी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और ये फिल्मची लड़की जो है वो आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढने वाली है। यस यू नो द ड्रिल कि आपको मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है हार्दिक। तो हार्दिक, क्या तैयार है आप? ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो वॉनबी एक्ट्रेस बनी थी,
3: तीसमार खान।
0: ग्रेट। तीसमार खान में कौन मैन यानी कि ठग कौन बना था?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म विद जूही चावला जिसमें ये दोनों लवर्स थे,
3: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन थे?
3: कादर खान।
0: कादर खान की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है,
3: दूल्हे राजा।
0: ग्रेट। दूल्हे राजा में फाइव स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा
0: की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं,
3: हीरो नंबर वन
0: की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर
0: का निकनेम लोलो है, लेकिन बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर, उनकी बहन ऑफ कोर्स।
0: ग्रेट। करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स होते हैं,
3: रावण
0: के मेल लीड का नाम?
3: शाहरुख खान ऑफ कोर्स।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
3: थेरेपिस्ट।
0: कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके इस चेन को ब्रेक करेंगे, बट इतना अच्छा जो गेम कंटिन्यू किया है आपने उसके लिए ये टैग तो बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो हार्दिक जहाँ पे अटके उसके आगे का गेम अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, देन यू नो द ड्रिल। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana, rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A, फर्स्ट फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
3: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: श्रुति ने बहुत गेम्स खेली है आपके साथ, अब आप जरा मेरे साथ गेम खेलिए ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची इन यू, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो टू माई इंस्टाग्राम DMs, अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके ये गेम खेल सकूँ। सो मैंने आज सबसे पहले कॉल किया हार्दिक को, वो एक पॉइंट पे अटक गए, बट उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए आई हैव गॉट दीपक जी ऑन द टेलीफोन लाइन। सर रेडी है?
3: कोशिश।
0: सो लेट मी आस्क द क्वेश्चन अगेन। शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने, डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन आता है?
3: आलिया।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से घुलू घुलू करेगी तो होएंगी ना उसको, ये डायलॉग
3: गली बॉय।
0: गली बॉय के मेल लीड का नाम
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर बने हैं,
3: सिम्बा।
0: सिम्बा में सिम्बा की गर्लफ्रेंड कौन बनी है?
3: सारा।
0: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम
3: केदारनाथ।
0: केदारनाथ के मेल लीड कौन थे?
3: सुशांत सिंह।
0: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बायोपिक की है?
3: धोनी।
0: MS धोनी में साक्षी धोनी का रोल किसने किया है?
3: कियारा अडवाणी।
0: कियारा अडवाणी ने कौन सी हॉरर कॉमेडी में काम किया है?
3: भूल भुलैया।
0: कौन सा पार्ट?
3: सेकंड।
0: ग्रेट। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा कौन बनते हैं?
3: कार्तिक।
0: कार्तिक आर्यन की फिल्म विद भूमि पेडनेकर,
3: भूमि पेडनेकर पति पत्नी और वो,
0: क्या बात है, पति पत्नी और वो में कार्तिक का अफेयर किससे होता है?
3: अनन्या।
0: अनन्या पांडे की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है?
3: लक्ष्य के साथ, ये भी लास्ट वीक आई है।
0: हाँ।
3: चांद मेरा दिल।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए इसी के साथ आपको भी डिक्लेयर करना चाहूंगी
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: मैं जो ये सोचती थी ना कि एक मैं ही हूँ जो बॉलीवुड फ्रीक है, बट आपसे इतनी सारी बातें करने के बाद, ये गेम्स खेलने के बाद, मुझे समझ में आ रहा है कि हर हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं एक फिल्मची जरूर है। वैसे ये फाइंडिंग मिर्ची फिल्मची का सिलसिला कल वापस कंटिन्यू होगा, बट आज के लिए इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोशराय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपने उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
5: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: जब कोई रेयर वाली फीलिंग आपको देने लगे तो आपको उस पे विश्वास ही नहीं हो पाता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज की बात नहीं कर रही, मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ और ये काइंडनेस वाली फीलिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि आज की डेट में हर दूसरा इंसान इस तरीके से गुस्सा होके बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा खून सवार है उनके सर पर कि भाई सामने वाले से दो मीठे बोल भी नहीं बोल पा रहे हैं लोग। इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन में आपसे बहुत काइंडनेस वाली फीलिंग के साथ कोई बातचीत भी करता है ना, देन आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार ये इंसान सच में ऐसा है या इसको कुछ चाहिए मेरे से। बिकॉज टुडे वी हैव एक्चुअली फॉरगॉटन कि भाई ये काइंडनेस जो है इट इज अ बेसिक डिसेंसी। और अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो यहाँ के अलावा MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक और इंस्टा पे कनेक्ट करके और भी ऐसे ही इत्तेफाक क्रिएट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मराठी सेंसेशन संजू राठौर जिनके गाने अब बॉलीवुड फिल्मों तक आ रहे हैं, एंड ये गाना आपके कानों तक किसने पहुंचाया? मस्त मौला गौरव आपके साथ, लेकिन आपके पैसों को बिना लाइन में लगे किसी एक्सचेंज गए घर कौन पहुंचाता है? आई पे, और उसके रेट हम बता रहे हैं। भाई राइट नाउ की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 38 पैसे 26.38 INR, एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.12, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज की बात करें जनाब 76.31 76.31 पाकिस्तानी रुपीज, तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छ दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 42.22 को भल्छ रेट रे बहनी, हाँ जी हजूर 42.22 का नेपाल रुपीज का रेट छ दाई। अगर इसके बाद हम बात करेगा बंधु बांग्लादेशी टका का दादा, एक कतरी रियाल के बदले 83.89 तो 33.89 बांग्लादेशी टका का रेट। मस्त मौला गौरव के साथ ये था आईपे करेंसी एक्सचेंज रेट मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. आपको याद है, ads में there used to be chocolates bigger than the usual, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए. पर जो ads के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे. लेकिन thanks to globalization, we do get to see big, big chocolate bars on selective stores, जो आज भी जब देखती हूँ ना, तो दिल बड़ा excited हो जाता है यार. वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं. लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स. एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में. और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है. और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो. मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी. आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट. आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करती हूँ. बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना. अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ. आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga.
1: Mirci, burga. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल तो बहुत स्टैंड अप कॉमेडी शोज आने लगे हैं यार, लेकिन क्या आपको इंडिया का पहला साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो पता है कौन सा था? आओ चलो बताती हूँ।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सब टीवी पर एक कॉमिक माइम शो शुरू हुआ था जिसका नाम था गुटुरगु। अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो शायद आपको ये बात याद आ जाए, क्योंकि मुझे भी ये शो जो है ना कहीं अपनी सबकॉन्शियस में ही याद था जब तक इसका जिक्र नहीं हुआ था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे हाँ, ऐसा शो तो हम देखा करते थे, जिसमें देयर वाज अ सुनील ग्रोवर एंड शीतल मलिक, जहाँ सुनील ग्रोवर ने बालू कुमार का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो रिवॉल्व्ड अराउंड दीज कैरेक्टर्स, जो कि एक टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड में सेट होते हैं और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो जीते चले जा रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी में जो खट्टी मीठी चीजें होती चली जा रही है, हंसी ठहाके लगते चले जा रहे हैं, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इस शो के टाइम पर अपना टीवी म्यूट भी कर दो ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस शो के अंदर कॉमेडी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन और जेस्टर्स के थ्रू ही पोर्ट्रे की जा रही थी। एंड आई एम श्योर दैट माइट बी वेरी वेरी टफ फॉर द एक्टर्स। ये शो जो था ये 3 सीजन तक चला, 189 एपिसोड टोटल इसने कम्प्लीट किए। एंड इट इवेंचुअली बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग साइलेंट कॉमेडीज एज वेल ऑन इंडियन टेलीविजन, क्योंकि इसके बाद मालेगांव का चिंटू करके भी एक साइलेंट कॉमेडी फॉर्मेट में शो आया था, लेकिन गुटरगु जो है वो इवेंचुअली पहला वो शो बना जो कि साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो था। एंड सुनील ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी कि उनके एक्टिंग असाइनमेंट्स में से सबसे टफ वाज गुटरगु द शो, बिकॉज ये शो पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस पर ही रिलाई किया करता था, कोई पंचलाइंस कोई डायलॉग्स नहीं थे इस शो के अंदर, और एक्टर्स अक्सर मिरर के आगे अपने एक्सप्रेशंस रिहर्स किया करते थे सो दैट परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और फेशियल क्यूज जो है वो निकल कर आए। एंड अनलाइक द रेस्ट ऑफ द सिटकॉम्स, इस शो का जो एक एपिसोड था वो एक या दो दिन के अंदर नहीं शूट हुआ करता था, बल्कि 3 से 4 दिन लगा करते थे एक एपिसोड को शूट करने के लिए, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन और रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट था कि उसकी टाइमिंग सही हो, उसके अंदर ह्यूमर हो, कि यार बार बार टेक्स लेने पड़ जाते थे, और इस वजह से जो शूट टाइम था वो लंबा खिंच जाया करता था। लेकिन साउंड इंजीनियर्स जो थे वो इस शो के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, मोर देन द राइटर्स, हाँ, क्योंकि उनको वो कॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो साउंड इफेक्ट, क्वर्की साउंड इफेक्ट्स देना, द राइट टाइम बैकग्राउंड क्यूज देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी था, जो कि सिर्फ और सिर्फ साउंड इंजीनियर्स ही कर सकते थे। मान गए बॉस, हमारे इंडियन टेलीविजन ने अब तो कह सकते हैं कि क्या नहीं एक्सपेरिमेंट किया है, एक साइलेंट कॉमिक शो भी एक्सपेरिमेंट किया है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिशन कश्मीर जब शूट हो रही थी तो देयर वाज दिस टाइम जब शूट के दौरान सोनाली कुलकर्णी जो है वो डर के मारे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब हुआ यूं कि सोनाली ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन लोगों को सीन्स मिला करते थे तो वो सीन जिस जिस जगह पर शूट होते थे उसी नाम से उस सीन का नाम हो जाया करता था। जैसे कि बालकनी में शूट हो रहा है तो बालकनी सीन, ड्राइंग रूम में हो रहा है तो ड्राइंग रूम सीन। अब एक सीन उनके पास एक दिन ऐसा आया जिस पे लिखा था बेडरूम सीन। सोनाली एकदम से चौंक गई कि बेडरूम सीन, और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने सोनाली को कहा कि भाई तुम तैयार हो यार, हो वैक्सिंग करवा रखी है तुमने, तो अच्छी सी मैक्सी वैक्सी पहननी होगी कोई सिल्क वाली, क्योंकि ये बेडरूम सीन है। सोनाली और ज्यादा नर्वस हो गई कि यार ऐसा सीन मुझे करना पड़ेगा संजय दत्त के साथ। इवेंचुअली जब ये सीन शूट हो रहा था एट दैट टाइम संजय दत्त ने सोनाली कुलकर्णी का ये जो अनकंफर्टेबल होने वाला बॉडी लैंग्वेज था ना वो नोटिस कर लिया, क्योंकि सोनाली बिल्कुल भी इन हर एलिमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद संजय दत्त ने सोनाली को अपने पास बुलाया और कहा बेटा देख तू इतनी नर्वस हो जाएगी तो मैं भी ये सीन नहीं कर पाऊंगा, और सीन में एक किस भी नहीं है तो तू नर्वस क्यों हो रही है। तब जाके सोनाली कुलकर्णी को थोड़ी जान में जान आई और इवेंचुअली ये सीन बहुत बढ़िया गया। और वैसे भी इस सीन में कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोकझोंक थी जिसमें पति बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। हाउ स्वीट वॉज दैट यार। इसीलिए तो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और सोनाली ने यहाँ से ये भी सीख लिया होगा कि नेवर जज अ सीन बाय इट्स टाइटल। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
3: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्प लाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है क्या करूँ
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है तो तू प्रिंटर बदल देना
2: मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार आज अगर हमें किसी बंदे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है ना, तो यार एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। डेट पता करते करते ये पता लग ही जाएगा, कितना लंबा प्रोसीजर है ना भाई। स्कूल में तो हम अपने क्रश के नाम के साथ फ्लेम्स खेल लिया करते थे एंड लाइफ वाज सॉर्टेड। हमें सब पता लग जाता था कि यार शादी किससे होगी, प्यार कब होगा, और बच्चे ये तो मुझे याद नहीं।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। स्कूल में आपने फ्लेम्स खेला है क्या? क्या खतरनाक थे भाई हम। अपने क्रश के साथ खतरनाक अंदाजे एक गेम के जरिए लगा लिया करते थे हम दोस्तों में ना। जब फ्लेम्स खेलते थे तो हम लोग तो जब बंदे का नाम लिया करती थी ना, तो हम सारी की सारी लड़कियां ऐसे शर्माती थी जैसे कि कोई दुल्हन शर्मा रही हो। वी यूज्ड टू ब्लश यार। हंसी आ रही है मुझे आज सोचते सोचते कि जिस लड़के के नाम से हम फ्लेम्स खेला करते थे ना, आज उसका लाइफ में नामो निशान तक नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली स्कूल में भी कुछ हुआ गया नहीं, कॉज माता पिता का खौफ इतना था भाई कि कहीं उनको पता लग गया ना तो माता पिता हमें पीटा पीटा करके नीला कर देंगे। और आज वक्त ये है कि जब शादी को हाँ बोलने में हम देर कर रहे हैं ना, तो खुद ही माता पिता आकर पूछ लेते हैं कि यार लाइफ में कोई है तो बता दो, हम खुद उसके घर वालों से जाकर बात कर लेंगे। आज हमारे घर वाले भी खुद कहते हैं कि एक नजर में भी प्यार होता है। तुम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो यार सारा। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जस्सी की आवाज में दिस आइकॉनिक गाना फ्रॉम हिज एल्बम। एंड वेल, बचपन से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं और हमें पता था कि यार गुजरात की कुड़िया जो है वो दिल ले जाती है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे पता लगा कि यहाँ की सिर्फ कुड़िया ही नहीं, यहाँ का तो क्विजीन भी आपका दिल ले जाता है। यार क्या खाने यार गुजरात में, ओ हो, एक बार आप शुरू हो जाओ ना तो खत्म होने का नाम नहीं लोगे, अनटिल एंड अनलेस आपका पेट चीख चीख के बोलेगा कि बस कर जाओ यार, अब तो रहम करो। इट्स दैट क्रेजी, इफ यू नेवर ट्राइड इट यू शुड ट्राई गुजराती क्विजीन, आई स्वेयर। चलो अब खाने की बात तो बहुत हो गई है, गाने की बात करते हैं।
1: सारा
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड विद दिस लेट्स जस्ट से अ यस टू मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की मिक्सेस को मैं मिक्स करके आपके लिए सुना देती हूँ, चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये मिक्स कौन से दो गानों के हैं। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यू।

0: बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं. और स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Sunil Shetty ने कभी कुणाल खेमू के साथ भी काम किया था. आपको वो फिल्म याद आई?
2: Mirchi, Tugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अगर आपको वो फिल्म नहीं याद आई तो मैं आपको याद दिला दूं. उस फिल्म का नाम है भाई. स्टारिंग सुनील शेट्टी, जिनके एक भाई थे कुणाल खेमू इन द फिल्म, विच वॉज अ छोटू सा लड़का एट दैट टाइम. और इस फिल्म में पूजा बत्रा और सोनाली बेंद्रे भी थी. और इसी फिल्म का एक गाना था ये.

वेल, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस गाने की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ. बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये गाना ओरिजिनल नहीं है बॉस. एक्चुअली ये गाना तमिल की फिल्म कर्णा के एक गाने से कॉपीड है.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है कि 90s या अर्ली 2000 का कोई ऐसा गाना या मूवी कहीं से कॉपीड है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आई ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Our business is our business, none of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
5: Qatar का number one radio station.
6: 89.6
7: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने प्यार किया कि एक्ट्रेस भाग्यश्री को तो सब याद रखते हैं। उन्होंने हालांकि ज्यादा फिल्में की नहीं और एक हिट फिल्म उनकी मैंने प्यार किया जो हमें हमेशा याद रह गई। और आज भी जब हम भाग्यश्री को देखते हैं ना तो यही सोच रहे होते हैं कि यार मैंने प्यार किया को रिलीज हुए तो बहुत साल हो गए यार, इनकी एजिंग कब रिवील होने वाली है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये cute सी भाग्यश्री, आपको पता है मैंने प्यार किया है के बाद इन्होंने शादी कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हिमालय के साथ, जो आज उनके हस्बैंड है। एंड इनफैक्ट आज भी ये कपल जो है ना, ये काफी इन लव दिखाई देता है, टच होट। लेकिन एट दैट टाइम जब इन दोनों ने शादी करी थी ना, तो ये बड़ी ड्रामेटिक सी शादी थी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। क्योंकि हुआ ये था कि भाग्यश्री की जो फैमिली थी उन्होंने इनकी इस शादी को अप्रूवल नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली के बिना ही शादी करनी पड़ी थी। और भाग्यश्री की तरफ से आपको पता है कौन मौजूद था उनकी शादी में? सिर्फ सूरज बड़जात्या की फैमिली एंड हिमसेल्फ एंड सलमान खान। ये दो पार्टीज थी जो भाग्यश्री को रिप्रेजेंट करी थी थ्रू आउट उनकी शादी में, यानी कि ये लड़की वाले थे। एंड दिस इज सच अ क्यूट थिंग यार, फ्रॉम द रियल टू द रियलिटी। दिस वॉज दैट मोमेंट जहां पर कलीग से दोस्त बनते हैं और दोस्त से रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार से रिश्तेदारी भी निभाते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने प्यार किया कि जब शूट चल रही थी एट दैट टाइम ऑल्सो सलमान खान न्यू की भाग्यश्री और हिमालय जो है दे आर डेटिंग ईच अदर, तो वो भाग्यश्री को हिमालय के नाम पे इतना छेड़ा करते थे कि बेचारी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो मैंने प्यार किया वाली फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री है ना, वो वहीं से आया करती थी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: Milchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Gabbana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Milchi, burga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: यार
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
9: FM मिर्ची वन, It's hot.
10: 89.6
9: It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Bachpan Ke Khwab.
2: Yaadon Ko Chitthi.
1: यार, सब बड़ों को आजादी से अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर हमने बचपन में हमेशा यही सोचा कि वाह, बड़ा होना कितना कूल है। और पूरे बचपन हमने यही दुआ की कि ऊपर वाले हमें जल्दी से बड़ा कर दो, बस जल्दी से बड़े हो जाएं हम। बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन जब बड़े हुए ना हम बचपन के ख्वाब, तो रियलाइज हुआ कि अब इन सारी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तो अल्टीमेट गोल है ही नहीं। किसी ने हमें बचपन में ये क्यों नहीं समझाया कि बड़े होकर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा खुद के लिए वक्त, सनसेट देखते हुए चाय पीना, दोस्तों के साथ ट्रिप टालना नहीं, सफर तय करना, तारों की छाओं में घंटों बैठना, चांद से बातें करना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब समझ आया कि ये भागम भाग और हसल वाली लाइफ नहीं, सुकून जिंदगी का मोटो है। और बचपन के ख्वाब, मैं भी बदल गई हूँ और तुम भी बदल गए हो। क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपने ख्वाब की डेफिनेशन जो है उसको बदल दिया है, जिसके चलते मैंने तुम्हें भी बदल दिया है। तो अब तुम बचपन के ख्वाब नहीं हो, अब तुम लड़कपन के ख्वाब हो, जिसमें मुझे आसमान की ऊंचाई नहीं छूनी है, लेकिन मुझे जमीन पर बैठे हुए आसमान में लगे हुए तारों को ताकना है। मेरे भी ख्वाब बदल गए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: अरे मुनु, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक है?
0: अरे कहावत है यार।
1: अरे

0: अपनी भी थोड़ी सी हट ली है। नाटक वाटक छोड़, सीधा हाँ बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गया बीजू शाह का कंपोज किया गया ये गाना इज कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: द गाना फ्रॉम द फिल्म गुप्त। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। यार गुप्त का ना पूरा का पूरा एल्बम, सारे के सारे गाने वो जस्ट माइंड बॉगलिंग। बिकॉज ये जो म्यूजिक था ना, वो जब तब आया था तब भी बड़ा हटके था, और आज तक भी मैंने ऐसा म्यूजिक तो नहीं सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन इफ यू थिंक डिफरेंटली देन डू लेट मी नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुप्त जैसा म्यूजिक जो है ना, वो आज तक भी मैंने नहीं सुना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फॉर श्योर। बिकॉज ये तो कुछ हटकर ही लेकर आए थे यार ये लोग। एंड इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे हैं कि सिंस ये एक थ्रिलर थी और रोमांटिक थ्रिलर थी, तो इस फिल्म के गानों में रोमांस तो है ही है, लेकिन जो रोमांटिक गाने भी चल रहे हैं ना, उनका जो म्यूजिक है, देयर इज समवेयर सम थ्रिल इन दैट म्यूजिक। वो थ्रिलर मूवी का भी म्यूजिक लग रहा है साथ साथ, लेकिन ये बुरा भी नहीं लग रहा है, ये कॉम्बो बड़ा सटीक लग रहा है। दैट इज द मैजिक विच वीजू शाह डिड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस म्यूजिक। एंड पुराने गानों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बात को ना सीधे से नहीं कहा जाता था कि हमें तुमसे मोहब्बत है, बात वहीं खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं नहीं, बात को ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जाता था, जैसे कि इस गाने में लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और कहा गया है कि यार तू हो कोई फूल तो तुझे चुरा लूं मैं, अपनी जुल्फों में लगा लूं मैं, पलकों के नीचे छुपा लूं मैं, और तू हो कोई जाम तो उड़ा लूं मैं, और अपनी प्यास बुझा लूं मैं। एंड आई रियली रियली लाइक द लिरिक्स फ्रॉम दोज टाइम्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार बात कही भी और नहीं कही भी, और सीधी भी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई, और हमें ना टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है ना वो बड़ी पसंद आती है, ये बात तो है। हाँ, लेकिन यही कहीं अगर जब लड़ाई हो जाती है और तब कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा होता है तो वो कतई ना पसंद आती है। बट या व्हेन इट्स अबाउट रोमांस, सीधी बात अगर ना की जाए और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के बात की जाए, उलझा उलझा के बात की जाए, तो ज्यादा मजा आता है। वो कहते हैं ना कि इश्क जब धीमी आंच पे पकता है तो उसका जायका ही कुछ अलग निकल कर आता है। चलो जी, मैं यहाँ से जाते हुए आपसे कहती हूँ हम हेराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो अब सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolder, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain,
5: office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain,
6: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 4 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ।

शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। वो कहते हैं ना कि गर्मी गर्मी को काटती है, तो हाँ जी, इतनी तपती भरी गर्मी में भी ना आपको जो चाय की प्याली में जो शांति मिलती है ना, वो ठंडे वंडे में नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बस चाय की प्याली आपने हाथ में लेनी है, ट्यून इन करना है मुझे, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपकी शाम को शानदार बनाने और सुनाने। हसीन गाने और बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा, तो ट्यून इन रखिए 89.6 को। इट्स हॉट
1: विद मिर्ची, फ्रेश माल,
2: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6
2: हेलो हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
2: हाँ बोलिए
3: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
3: सर, सॉरी पूरा बता
2: क्या करो भैया, कहाँ
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर।
2: हेलो
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, से बोल रहा हूँ। तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
2: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
3: अब तो फंस गए सर।
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
4: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: yeah, पटाक।
7: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
8: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
9: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
10: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
5: जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यानी मैंगो सिर्फ एक फल ही नहीं है, ये हमारी यादों का ना बहुत बड़ा हिस्सा है। बात करें कि समर आते ही ना सबसे पहले याद आता है एक चीज, वो आम। लेकिन आम को ना खाने के तरीके बड़े डिफरेंट है, कोई इसको चूस कर खाता है, कोई काट कर, और कोई इसका शेक बना के पीता है। वो कहते हैं ना, नाम एक और काम अनेक। और अब देखिए कि हमारे कतर में भी ना मैंगो का जादू एकदम सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल हुआ उसमें करीब करीब 170 यानी कि 170 टन आम बिक गए। अरे यार, बहुत ज्यादा आम खा लिए हम लोगों ने। वैसे कतर वालों ने इस साल मैंगो की ना पूरी वर्ल्ड टूर की। पहले इंडियन मैंगो फेस्टिवल हुआ और उसके बाद हुआ पाकिस्तानी। यही तो खूबसूरती है ना, एक साधारण सा फल लेकिन हर इंसान को जोड़ने वाला ये एक ऐसा फल है जो सबकी जिंदगी में मिठास लाता है। चाहे आपकी लैंग्वेज अलग हो, चाहे आपका देश अलग हो, लेकिन आपको जोड़ता है मैंगो फेस्टिवल। तो बताइए आपकी कौन सी फेवरेट वैरायटी है, चौंसा, अल्फांसो, सिंदरी, अनवर, रतौल, कौन सी आपकी फेवरेट है? जल्दी से ना जाके मुझे आप मैसेज करिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5000 1896 पे भी, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी बता सकते हैं जो है मिर्ची ईशा के नाम से। एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी हमें DM करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कौन सा है और आप कौन सी रेसिपी बनाते हैं मैंगो से, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मीठी मीठी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईपे पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
0: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

के लिए एक और ऐसा प्राउड मोमेंट। जहाँ CNBC ने 2026 के लिए गल्फ और इजिप्ट के टॉप 100 बिजनेस लीडर्स की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कतर के 9 बिजनेस लीडर्स ने अपनी जगह बनाई है। What an achievement, guys! ये एक ऐसा प्रेस्टीजियस लिस्ट है जहाँ पे उन लीडर्स को हाईलाइट करता है जिनकी विजन, लीडरशिप और इनोवेशन से पूरे रीजन की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इस लिस्ट में 11 मेजर सेक्टर्स को कवर किया गया है जिसमें से एनर्जी, बैंकिंग, रियल एस्टेट, टेलीकॉम एंड फिनटेक ये सब आते हैं। कतर की तरफ से इस लिस्ट में शामिल है कतर नेशनल बैंक, कतर इस्लामिक बैंक, ऑरिडो, वोडाफोन कतर, कतर गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कतर नेशनल इस्लामिक बैंक, बारवा रियल एस्टेट और लेशा बैंक जैसे कई टॉप CEOs एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है। बाकी ये सिर्फ लीडर्स की एक पर्सनल सक्सेस नहीं है, ये बात है कतर की। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लीडर्स एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन कतर फॉर दिस इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। एंड इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे और गाने सुनाती रहूंगी आपको मस्त वाले, और मेरे साथ बने रहिए ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक, बारवा रियल एस्टेट और लेशा बैंक जैसे कई टॉप CEOs एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है। बाकी ये सिर्फ लीडर्स की एक पर्सनल सक्सेस नहीं है, ये बात है कतर की। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लीडर्स एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन कतर फॉर दिस इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। एंड इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे और गाने सुनाती रहूंगी आपको मस्त वाले।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सूरज भैया का ये रौद्र रूप देख के ना मुझे सच्ची में घबराहट हो रही है। इतनी तेज धूप, ओह माय गॉड।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की बात करें तो भाई 43 डिग्री सेल्सियस है आज टेम्परेचर, पार्टली सनी है, लग नहीं रहा कहीं से भी कि ये पार्टली है, एंड इट विल बी फील लाइक 45 डिग्री सेल्सियस। रात को टेम्परेचर तकरीबन 36 डिग्री तक हो जाएगा, लेकिन गर्मी का प्रकोप उतना ही रहेगा। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी मिर्ची ईशा को बोलिए ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100-0813.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: तेरी मां दिया फेरे कुड़ी, मोड़ दीजिए तो तेरी सहरे कुड़ी।

0: तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट। लेकिन यहाँ पे जो मैं तारीख की बात कर रही हूँ वो तारीख नहीं है, वो डेट्स है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेट्स फेस्टिवल के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी खजूर के फैन हैं, अगर आप भी डेट्स के फैन हैं, तो आपके लिए एक ऐसा लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल लेके आई हूँ जिसको डेट फेस्टिवल बोला जाता है। वो होने जा रहा है आपके कतर में, एंड कतर की मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपैलिटी लेकर आई है ये लोकल डेट फेस्टिवल, जो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक है। ये सूख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में। एंड इसके अलावा बात करें इस फेस्टिवल की, तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है इस फेस्टिवल का, दैट इज की कतर की जो रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करना और हमारे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना। उसके अलावा यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी फ्रेश और फाइनेस्ट रुताब डेट्स की अलग अलग लोकल वैरायटीज। यहाँ सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे फार्मर्स जो डायरेक्टली अपनी फार्म से लेके आते हैं इन डेट्स को। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, ये फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक बड़ा नॉलेजेबल आपका एक टूर हो जाएगा अगर आप जाएंगे। एंड इसके टाइमिंग्स भी बता दूँ, तो संडे से थर्सडे शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है, एंड फ्राइडे और सैटरडे को ये शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। तो अगर आप वीकेंड में या किसी दिन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, घूमते घूमते निकल जाइए और देखिए डेट्स का टेस्ट भी और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। एंड ऐसी ही ना मीठी मीठी बातों के साथ फिर से मैं सिलसिला जारी रखूंगी बातों का और गानों का। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: Milciu. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना, खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: एक महान व्यक्ति की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जिंदा रहती है। वहीं बात करें फादर एमिर की, तो उन्होंने कतर के विकास, संस्कृति और आधुनिक पहचान को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी विजन और उनके जो नेतृत्व को आज भी पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है, और इसी याद में कतर म्यूजियम ने फादर एमिर की याद और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए कंडोलेंस बुक्स खोली हैं। इन पुस्तकों में आप सब अपनी श्रद्धांजलि संदेश लिख सकते हैं और इस महान नेतृत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। एंड ये बुक्स जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मिलेंगी, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, और 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में भी आपको ये बुक्स मिलेंगी जहाँ पे आप अपना संदेश लिख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
7: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
6: योर स्पेशल ऑफर?
7: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
6: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
7: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
6: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: छोटी थी वही स्कूल ड्रेस में स्कूल जाती थी, और अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो गई हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल में थे, टीचर ने बोर्ड पे जो लिखा था उसको पूरा पूरा अपनी नोटबुक पे लिख रहे थे। धीरे धीरे ही मानो ऐसा लग रहा था कि वो समय थम सा गया है, और क्लास में एक भी बच्चा नहीं था, सब चले गए थे, टीचर भी चली गई थी, सब इंसान क्लास में से चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड लगे हुए थे अपने अपने किस्से सॉल्व करने, अपनी बातें करने और बोर्ड पे कुछ लिखने और इंजॉय करने। फिर जो एक केयर टेकर थे स्कूल के, वो आए क्लास के अंदर और बोला कि बेटा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, सारा स्कूल तो चला गया है, आपकी बसेस भी चली गई हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैं और मेरी सहेली एकदम रोने जैसे लग गए और हमने उनसे पूछा कि अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो अब तुम्हें मैं प्रिंसिपल के पास लेके चलता हूँ और वहाँ पे बात करते हैं कि क्या होगा। वहाँ पे हम चले गए प्रिंसिपल के पास, बैठे काफ़ी देर, बारिश हो रही थी और टिप टिप टिप टिप बारिश का मज़ा भी ले रहे थे हम, और बारिश हमारी आंखों से भी निकल रही थी क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे, हमारी बस निकल गई थी और अब घर जाएं तो जाएं कैसे। प्रिंसिपल ने हमारी फ़ोन लगाया घर पे और बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि आपके बच्चे ऐसे छूट गए हैं, बस उनकी छूट गई है, अब उनको लेने आपको आना पड़ेगा। तो बस रोना धोना हम लोगों का चालू था और वहीं से भैया आए और उन्होंने हमें एक चॉकलेट दी और बोला कि बेटा रो मत, क्योंकि आपके घर पे फ़ोन हो चुका है, अब घर से आएगा कोई आपको लेने और बस आप घर चले जाएंगे। बस इसी के बाद ना मुझे ये छोटे छोटे इंसिडेंट अपनी लाइफ के ना इतने याद हैं और इतना अजीब लगता है ना कि वो छोटे होते बेपरवाह जो रहते थे हम लोग, वो आज भी मुझे बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस समय जैसे बेपरवाह थी वैसे ही अभी बेपरवाह हो जाऊँ, तो क्या ही मज़ा आए ज़िंदगी का। अगर आपको जानना है उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड के पापा आए हमें लेने और फिर हम मैटाडोर में गए। जम्मू कश्मीर में हम रहते थे तो वहाँ पे मैटाडोर बहुत चलती थी, तो हम मैटाडोर में गए घर वापस और बस रोते पीटते और डर थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी, बाकी सब ठीक था। ऐसी ही मज़ेदार बातों के साथ सिलसिला मैं जारी रखूंगी। मिर्ची ईशा के साथ सुनते रहिए अर्ली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

अब बात कर लेते हैं कुछ पैसे की। एक कतरी रियाल इंडियन रुपीज में देखे तो दैट इज 26.36, एक कतरी रियाल इंटू लंकन रुपीज इज 92.20, एक कतरी रियाल इंटू बांग्लादेशी टका इज 33.93, एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज इज 42.16, एक कतरी रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपीज इज 76.32। घर में भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियाँ। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.3।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 6 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

कभी सोचा है कि अगर सुबह उठते ही गर्दन या कमर में ऐसा दर्द हो कि नॉर्मल चलना मुश्किल हो जाए और फिर पता लगे कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा? ओह माय गॉड। लेकिन अब कतर में ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि PHCC अनाउंस किया है कि अब देश में 15 हेल्थ सेंटर्स में फिजियोथेरेपी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इसके लिए लगभग 69 ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट्स की टीम पेशेंट्स की मदद के लिए तैयार रहेंगी। और अगर आपके नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं भी है तो भी वो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको उसी रीजन के दूसरे सेंटर या फिर फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। भाई सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्लिनिक सुबह और शाम पूरा हफ्ता ऑपरेट करेंगे, एंड मतलब कि ट्रीटमेंट जब भी आपको करवाना है मोस्ट कन्वीनियंटली कभी भी करवा सकते हैं। तो याद रखिए, हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि छोटा दर्द हो या बड़ा दर्द हो वक्त रहते ही ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

सोचो, सुबह की फ्रेश हवा, बच्चों की हंसी, लोग जॉगिंग कर रहे हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली है। अरे वाह क्या बात। अब ये सिर्फ एक ख्वाब ही नहीं है बल्कि कतर की रियलिटी बनने जा रही है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने कतर को और भी ग्रीन और भी ब्यूटीफुल बनाने का पूरा जिम्मा ले लिया है, क्योंकि पिछले साल 12 नए पब्लिक पार्क्स का इनिशियल हैंडओवर कंप्लीट हो चुका है। और सिर्फ पार्क्स की बात नहीं कर सकते, 5 पब्लिक प्लाजास जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, जहाँ पे फैमिलीज दोस्त मिलकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं किसी भी वीकेंड। एंड और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इससे रिलेटेड, यानी कि पार्क्स को, पब्लिक फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं खूब सारे सीसीटीवी कैमरेज, इनका भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाई देखिए, जब आपकी कंट्री आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपका भी जिम्मा बनता है कि आप अपने पार्क्स को ब्यूटीफुल रखें, साफ रखें, कहीं भी गंदा डालें और टेक केयर करें कि कहीं पे भी गंद डल रहा है तो वहां पे जाके सफाई भी कर सकते हैं, आप खुद ही उठा सकते हैं। बट प्लीज डोंट लिटर एनीवेयर, बिकॉज ये जो पार्क्स हैं ये आप ही के लिए हैं एंड ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये आप ही के लिए हैं। तो बस किसी भी वीकेंड जाइए, कोई भी पार्क में एंजॉय करिए फैमिली के साथ और सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाने साथ।

أشهد أن لا

0: हर सुबह ऑफिस जाते हुए ना मुझे मेट्रो में ना एक अंकल मिलते थे, और वो अंकल ना हमेशा एक ही सीट पे बैठते थे और खिड़की के बाहर देखते थे और हल्का सा स्माइल करते थे। कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जरूर रोज मैं उनको देखती थी। तो एक दिन सोचा कि आज मैं उनको हेलो बोल ही देती हूँ। तो मैं इनके पास गई और मैंने बोला, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपकी स्माइल देखकर ना मेरा दिन बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। जब मैंने ये लाइन बोली उनको, तो वो अंकल ना बड़े इमोशनल हुए और बड़ी इमोशनल तरीके से उन्होंने मुझे देखा और बोले कि बेटा, मेरी वाइफ को गुजरे हुए ना 2 साल हो गए, लेकिन मैं रोज़ इसी मेट्रो में इसीलिए आता हूँ क्योंकि हम दोनों इसी रूट से साथ ट्रैवल करते थे, और मैं ना स्माइल इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि स्माइल करोगे ना तो दुनिया भी स्माइल करेगी। आज पहली बार किसी ने ना मुझसे बात की है, थैंक यू सो मच। जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना यार, मुझे अभी भी बोलते हुए गूज़बम्स आ गए, मेरी सोल को टच कर गई वो बात। बस उस दिन से ना मुझे समझ आ गया कि कभी कभी ना एक हाय, हेलो या एक गुड मॉर्निंग भी अगर आप किसी को स्माइल करके बोलते हो ना, उसका दिन बन जाता है। तो नेवर फॉरगेट टू विश एवरीवन, जो भी आपके साथ हैं, चाहे लिफ्ट में हैं, चाहे बाहर हैं, कोई भी है, उनको विश करना ना भूलें और स्प्रेड स्माइल टू एवरीवन। ये कहूँगी कि ये चैलेंज ना मैं आपको भी देती हूँ, अगर आज आप अपनी लिफ्ट से जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, कोई भी मिलता है आपको, प्लीज़ गिव अ स्माइल। इट कॉस्ट नथिंग बट जस्ट अ इमोशन, अ लव। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको सुनाऊंगी बहुत सारे गाने। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपे पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपे सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपे ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपे स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: दोस्ती का कुछ सुले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। इस जंगल बुक के गाने को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। कितना ही फेमस था बचपन में ये, जैसे ही कहीं बजता था हम दौड़ के आ जाते थे कि बस अब शुरू हो गया जंगल बुक, बैठ जाओ और अब मैं अपने सोफे से या बेड से नहीं उठने वाला, ये देख के ही उठूंगा, यही होता था ना हमारे साथ। तो अगर आपको अब ऐसा एक जंगल वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आपके कदर में होने जा रहा है इंटू द जंगल शो। जी हाँ, 23 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इट इज़ एन इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में जो वो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अलावा जंगल के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतना खूबसूरत तरीके से आपको स्टेज शो करके दिखाएंगे। एंड इट्स अ थियोरेटिकल पपेट्री हो रही है, डायनेमिक डांसेस हैं, थ्रिलिंग आपको सर्कस इंस्पायर्ड एक्ट्स मिलेंगे, भाई और क्या चाहिए। वो जो सर्कस वाले जो कलाकारियां होती है ना, सारी कलाकारियां आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। भाई करना क्या है, जाना है, आप जा सकते हैं ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में 23 जुलाई से ये 1 अगस्त तक है। 5:30 PM शुरू हो जाएगा, 7 PM भी टाइम है इसका और 8:30 PM भी इसका टाइम है। प्राइस इज फ्री, यस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल है ना कि एक एक्ट ऐसा देखने आप स्टेज पे जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय देम, तो जरूर देखने जाना चाहिए यार, एटलीस्ट यू नो फॉर देम हु इज एन आर्टिस्ट जो शो कर रहे हैं अपनी आर्टिस्ट्री इन अ ब्यूटीफुल वे। तो जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा इस इवेंट को एंड स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
3: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ बेटा सवाल क्या है?
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 7 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

मदर के लिए एक और ऐसा प्राउड मोमेंट। जहाँ CNBC ने 2026 के लिए गल्फ और इजिप्ट के टॉप 100 बिजनेस लीडर्स की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कतर के 9 बिजनेस लीडर्स ने अपनी जगह बनाई है। What an achievement, guys! ये एक ऐसा prestigious list है जहाँ पे उन leaders को highlight करता है जिनकी vision, leadership और innovation से पूरे region की economy आगे बढ़ रही है। इस list में 11 major sectors को cover किया गया है, जिसमें से energy, banking, real estate, telecom and fintech ये सब आते हैं। कतर की तरफ से इस list में शामिल हैं कतर National Bank, कतर Islamic Bank, Orido, Vodafone Qatar, कतर Gas Transport Company, कतर International इस्लामिक बैंक, बारवा रियल एस्टेट और लेशा बैंक जैसे कई टॉप CEOs एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। बाकी ये सिर्फ लीडर्स की एक पर्सनल सक्सेस नहीं है, ये बात है कतर की। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लीडर्स एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन कतर फॉर दिस इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। एंड इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे और गाने सुनाती रहूंगी आपको मस्त वाले, और मेरे साथ बने रहिए ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकता हूँ मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: तो मैं आपको, अरे मैडम,
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
2: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट। लेकिन यहाँ पे जो मैं तारीख की बात कर रही हूँ वो तारीख नहीं है, वो डेट्स है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेट्स फेस्टिवल के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी खजूर के फैन हैं, अगर आप भी डेट्स के फैन हैं, तो आपके लिए एक ऐसा लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल लेके आई हूँ जिसको डेट फेस्टिवल बोला जाता है। वो होने जा रहा है आपके कतर में, एंड कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी लेकर आई है ये लोकल डेट फेस्टिवल, जो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक है। ये सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में। एंड इसके अलावा बात करें इस फेस्टिवल की, तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है इस फेस्टिवल का, दैट इज की कतर की जो रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करना और हमारे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना। उसके अलावा यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी फ्रेश और फाइनेस्ट रुताब डेट्स की अलग अलग लोकल वैरायटीज। यहाँ सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे फार्मर्स जो डायरेक्टली अपनी फार्म से लेके आते हैं इन डेट्स को। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, ये फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक बड़ा नॉलेजेबल आपका एक टूर हो जाएगा अगर आप जाएंगे। यानी इसके टाइमिंग्स भी बता दूँ, तीस संडे से थर्सडे शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है, एंड फ्राइडे और सैटरडे को ये शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। तो अगर आप वीकेंड में या किसी दिन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, घूमते घूमते निकल जाइए और देखिए डेट्स का टेस्ट भी, और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। एंड ऐसी ही ना मीठी मीठी बातों के साथ फिर से मैं सिलसिला जारी रखूंगी बातों का और गानों का। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. It's hot.

0: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर संडे से फिटनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं और फिर थर्सडे तक सिर्फ प्लान ही रह जाते हैं, तो दिस इज योर साइन। हाँ, इस फ्राइडे अपनी मॉर्निंग को बनाइए एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग एंड फुल ऑन हेल्दी। भाई करना क्या है, दोहा फेस्टिवल सिटी लेकर आया है इंडोर 5 किलोमीटर मॉर्निंग जॉगिंग सेशन, जहां पे आपको सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बाहर की गर्मी की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप प्योर एसी के कंफर्ट में जॉग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं और अपनी फिटनेस गोल्स की तरफ से स्ट्रांग स्टेप भी ले रहे हैं। तो भाई एक तरीके से फायदे का ही सौदा है ना। तो ये इवेंट 31 अगस्त तक ही है, फ्राइडे को शुरू हो रहा है, टाइमिंग इज 7:30 to 9 एंड एंट्री इज टोटली फ्री। तो बस आइए और इंजॉय करिए। तो अपने रनिंग शूज निकाल लीजिए, अपने दोस्तों के भी निकाल लीजिए और उनको घर से बाहर निकाल के अपने साथ ले आइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता है। एक हेल्दी ट्विस्ट अगर आपने अपनी लाइफ में देना है तो ये इससे बढ़ के हेल्दी ट्विस्ट कोई हो ही नहीं सकता भाई। हर किलोमीटर के साथ सिर्फ कैलोरीज ही नहीं बर्न होती, आपका स्ट्रेस भी बर्न होता है। तो बस मिलते हैं आपको दोहा फेस्टिवल सिटी, जहाँ पे रन, वॉक, स्माइल एंड रिपीट। बस स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मर्सी 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। शाम तो हो गई लेकिन मौसम ने अंगड़ाई अभी तक नहीं ली। और मेरा भी जाने का टाइम आ गया भाई। मौसम तो अंगड़ाई नहीं लेगा, मौसम ऐसे ही रहेगा तड़कता भड़कता गर्मी के साथ। बस मेरा टाइम भी हो चुका है अब जाने का। आपसे लेती हूँ अलविदा, कल दोबारा मिलूंगी इसी समय इसी वक्त और सुनाऊंगी आपको खूब सारी बातें और आपसे बातें भी की जाएंगी और ऑफकोर्स आपको गाने भी सुनाए जाएंगे खूबसूरत से। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हाई हेलो बोलना चाहते हैं, तो आप मिर्चीवान कदर पे हाई हेलो बोलिए, हाई कहिए तो हम भी आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और मिर्ची ईशा को भी फॉलो कर सकते हैं और DM पे हाई हेलो भी भेज सकते हैं। बाकी अभी के लिए लेती हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, सी या शुभरात्रि। अब कल मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्चीवान, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और सही कहते हैं यार जो ये कहते हैं कि द क्लोजेस्ट वंस कैन बिट्रे यू द मोस्ट, जो आपके सबसे करीब होगा ना वो शख्स आपको सबसे बड़ा दुख दे सकता है, और दुख दे ही जाता है सबसे बड़ा वही शख्स जो आपके सबसे करीब होता है ना। सुहेल अजीमाबादी साहब का शेर है कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा है। आय हाय हाय हाय हाय, कितनी सच्ची बात है यार कि मतलब अनजान आदमी चाहे जो बोले अपने को क्या मतलब, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. Thanks a lot.
3: हाँ बोलिए
4: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
4: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: ये पगला.
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
0: FM मिर्ची वन. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब मौका है, दस्तूर है।
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपका तारुफ कराए हमारे आज के शायर अली सरदार जाफरी साहब से। जाफरी साहब का जन्म 1913 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। सरदार जाफरी ने वर्तमान परिस्थितियों और जिंदगी में रोजमर्रा पेश आने वाली नित नई समस्याओं को अपनी शायरी का विषय बनाया और अपने दौर के नाड़ी विशेषज्ञ की हैसियत से उन्होंने जो देखा उसे अपनी शायरी में पेश कर दिया। अली सरदार जाफरी साहब का मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है जो हमें पेशेंस की वर्च्यू सिखाता है। कहते हैं कि इंकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, इंकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज नहीं। क्या बात है, मतलब अगर बहुत तेज नहीं है तो बहुत धीमा भी नहीं है यार, चिल करो, इंकलाब आने का अपना टाइम है, अपना टाइम आएगा। ऐसे ही अलग अलग शायरों सदाबहार गजलों और नगमों के लिए सुनते रहे मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कैताशी है आपके साथ, और जो किस्से कहानियां होते हैं ना, उनमें जो बातें हम तक पहुंचती हैं, वो कभी ना कभी तो किसी ना किसी के द्वारा जी ही गई होती हैं, है ना। यजदानी जलंधरी साहब का शेर है कि शमा होगी सुबह तक बाकी न परवाने की खाक, न आग बचेगी न परवाना बचेगा न उसकी खाक बचेगी। शमा होगी सुबह तक बाकी न परवाने की खाक, अहले महफिल की जबां पर दास्तां रह जाएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां सुनाना, कहानियां लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी रह जाता है, क्योंकि जो सबक है वो तो कहानी के अंदर छुपा है ना। और जो जिंदगियां जी गई हैं उनका जो एक तरीके से सम है, सम टोटल है, वो भी उस कहानी के अंदर ही बस जाता है। तो इसलिए कहानियां बहुत जरूरी हैं दोस्त। शमा होगी सुबह तक बाकी न परवाने की खाक, अहले महफिल की जबा पर दास्तां रह जाएगी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
4: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो अब सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
3: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood bol dal Bollywood Bollywood Bollywood bol dal
2: only on Mirchi it's hot
5: Nahi Basanti in kutton ke samne mat nachna।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
7: कैसे रुक सकता है?
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
2: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: केवल किसी खास दिन क्या प्यार दिखाना,
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और हाँ जी, वक्त आ चला है ताशी अनप्लग्ड का। और आज ताशी अनप्लग्ड में मैं आपको बताऊं, अभी हाल में ही मेहदी हसन साहब की यौम पैदाइश थी, उनका जन्मदिन था, तो मुझे बड़ा मन किया कि यार चलो आज बैठ के मेहदी हसन साहब की सारी गजलें सुनूंगा, ये वो दुनिया जहान। लेकिन जहन में ख्याल आया कि यार ताशी तुम तो रोज ही उन्हें इतना सुनते हो, तो किसी खास दिन पे ऐसा पागल हो जाना तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक गजल मेहदी हसन साहब की, आई थिंक वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क्स, ऑल्दो आई एम नो वन टू से इट, उस्ताद आदमी थे वो, लेकिन उनकी मेरी सबसे बड़ी पसंदीदा गजल है ये, एंड इट्स कॉल्ड अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा। ये मिर्ज़ा गालिब साहब की लिखी हुई है, इट्स अ ब्यूटिफुल गजल, और आपके नजर है।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: Mirchi helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: मौसम बेईमान या फिर गर्लफ्रेंड परेशान या फिर पति है हैरान या फिर ढूंढना है नया मकान या आज फिर से बंद है दुकान। कोई भी सिचुएशन हो इनके पास गाना रेडी है साहेबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हिंदी फिल्मों के वो लिरिसिस्ट जिन्होंने ऑलमोस्ट हर सिचुएशन पे गाना लिखा हुआ है, आनंद बख्शी साहब। लिखने गाने का, गाने लिखने का बचपन से ही शौक था इनको। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था इन्होंने।
1: मुझे बचपन से ही कुछ गाने का शौक था, मैं गाता वाता था और ड्रामा वगैरह में, रामलीला में कुछ करते थे और पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। और फिर कभी कभी हम स्कूल की किताबें भेज के भी टिकट लेके पिक्चर्स देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। फिर ये शौक कब लिखने में बदल गया इसका कुछ मुझे ठीक से एहसास नहीं है। और बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि कभी ना कभी किसी दिन मैं बम्बई पहुँचूँगा और मैं गीतकार बनूँगा। दिल में सोचा हुआ था कभी गाना गा लेंगे, गाना नहीं मिला तो गीत लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बॉम्बे ही जाके रहेंगे।
0: बख्शी साहब अपनी फौज की नौकरी छोड़ के बॉम्बे आ गए थे, फिर गिव अप करके वापस भी चले गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए थे, बॉम्बे से दूर नहीं रह पाए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4 हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना सोडा,
4: सोडा
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
6: पुरानी चीज आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आनंद बख्शी साहब आपको पता है इंडियन आर्मी में थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि भाई बचपन से उनको जब लिखने गाने का शौक था तो वो फौज में क्यों चले गए थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: वो कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि हम हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे लिटरेचर की तरफ मैं नहीं जा सका, क्योंकि फौजी जिंदगी में लिटरेचर के लिए बहुत कम वक्त और माहौल होता है। तो जब फौज में था तब भी मैं अक्सर रात को हमारे फील्ड एरिया में दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे होते थे, तो मैं उनके नीचे खड़ा रहता था और जब वहाँ से वो किसी भी गीतकार का गीत बजाते थे और बोलते थे कि अब सुनिए ये रचना फलां गीतकार की है, तो मेरे दिल में एकदम एक हुक सी उठती थी, या अल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा किसी स्पीकर से मेरा नाम भी लिया जाएगा कि आप सुनिए आनंद बख्शी की रचना।
0: तो चलिए देरी नहीं करते, बख्शी साहब की ये खूबसूरत रचना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जी आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये जो गाना है ना तिरछी टोपी वाले, इसका एक सैड वर्जन है जिसके लिरिक्स में ऐसी कुछ लाइन है कि मैं गांव का सीधा साधा बलम, कहां मैं आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, एंड उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो अपने लिखने गाने के सपने पूरे करने बॉम्बे आए तो थोड़े घबरा गए। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बॉम्बे का सफर, फौज से मैंने नौकरी छोड़ के बॉम्बे आया, मैं कोई 50 में मैं आया पहली बार, और मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि मुझे बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई, और एक दो महीने में ही मैं ये कसम खा के कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँ, वापस चला गया। और फिर जाकर मैं फौज में भर्ती हो गया, और इस दौरान में मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी वजह पैदा कर लूँ कि मैं दोबारा बम्बई नहीं जाऊँ। तो मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, क्योंकि फिर भी मैं रुका नहीं, और दो तीन साल की नौकरी करने के बाद मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और मैं फिर बम्बई आ गया। दिस वॉज दी एंड ऑफ 1956।
0: इसके बाद इनको बॉम्बे में स्टेबल होने के लिए कुछ 6-7 साल लग गए थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. Anand Bakshi Special. Charu ke saath. Only on Mirchi.

0: सौ रब दी क्या ही टैलेंटेड बंदा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब जब नए नए बॉम्बे आए थे ना तो गिव अप करके चले गए थे, फिर वापस बॉम्बे आए थे, फिर वापस गिव अप करके जाने वाले थे, तब उनको उनके एक दोस्त ने रोका। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने उस दोस्त का जिक्र किया था, सुनिए।
1: दो तीन चार महीने में फिर मेरी हिम्मत टूटने लगी, किराया वगैरह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर एक अजनबी शख्स मेरा कोई दोस्त बन गया, और रेलवे में काम करता था, टिकट चेकर था मेरलैंड स्टेशन पर। उसे मैंने एक दिन कहा कि मुझे दिल्ली का टिकट ले दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो पता नहीं बेचारा इतना इम्प्रेस था मुझसे, वो कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर गीतकार बनोगे। तो उसने मेरी बड़ी मदद की, इतनी मदद की कि वो मेरा सामान उठा के मुझे अपने घर ले गया बोरीवली, और उस शख्स ने मुझे 6 बरस तक अपने साथ रखा, रहने की जगह दी, खाना वाना भी वही खिलाता था। उनका नाम था क्षेत्रमल, बॉम्बे शहर में और कुछ था नहीं, और जो दो चार रिश्तेदार थे उन्होंने ज़रा मुँह फेर लिया। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो इस बार भी मुझे फिर कसम खा के वापस जाना पड़ता।
0: कहते हैं ऊपर वाला कई बार जब खुद आपकी मदद करने नहीं आता तो फरिश्ते समान किसी इंसान को भेज देता है। ये दोस्त वही रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जींस आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूं प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूं?
2: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: कुछ 6000 गाने लिखे होंगे आनंद बख्शी साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनका पहला गाना कौन सा था? एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, ये लेट 56-57 की बात होगी।
1: उन दिनों में हर रोज हम घूमते रहते थे, रोज किसी न किसी फिल्म स्टूडियो में जाते थे, जो भी मिल गया उससे मिला। और एक रटा हुआ जुमला था कि मैं गीतकार बनने को आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। इत्तेफाक से भगवान दादा की कोई फिल्म शुरू होने वाली थी और वो दफ्तर में बैठे हुए कुछ किसी सॉन्ग राइटर का इंतजार कर रहे थे। बड़े अच्छे मौके पर पहुंच गया और मैंने जाकर भगवान दादा से कहा कि मैं गीत लिखता हूँ। उन्होंने फौरन कहा गीत लिखो, तो मैं लिखने बैठ गया। और मुझे याद है कि 2-4 रोज में मैंने उनके 4 गीत लिखे। ना खुश हो गया, मुझे लगा कि मैंने जीत लिया। एक गाना था उसका मुखड़ा ऐसे था कि धरती तेरे लिए तू है, धरती के लिए धरती के लाल ना करे इतने मलाल, तेरी दौलत है तेरे हौसले। ये छोटी सी स्टंट पिक्चर थी तो कुछ खास उससे कामयाबी नहीं मिली।
0: वेल बख्शी साहब की ये वेल डिजर्व्ड ड्यू कामयाबी 7-8 सालों बाद आई थी। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट हियर मैं हूँ चारू आपके साथ, पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
4: कौन बोल रहा है
5: ये, और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
4: क्या मजाक चल रहा है।
5: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
6: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: पटाक।
8: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
0: FM Mirchi 1. It's hot.
11: Purani Jeans. Anand Bakshi Special. Charu ke saath. Only on Mirchi.

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मों के लिए गाने लिखने शुरू किए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके शुरुआती गाने कुछ खास चले नहीं, वो फिल्में भी नहीं चली। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में तब के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वही स्ट्रगल चलने लगी, सुबह शाम भाग दौड़, इससे मिलो उससे मिलो। उसके बाद 10 साल मेरे बड़े अपने मिस्टर सुनील दत्त, ये मेरे दोस्त भी हैं और दूसरे रिश्तेदार भी हैं, इनके पास मैं गया तो इन्होंने मुझे एक खत दिया इंट्रोडक्शन का, जस्ट टू मीट मिस्टर राज कपूर। तो राज कपूर साहब के सेक्रेटरी थे हिरन खेड़ा साहब, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा सुनाओ तुम क्या लिख रहा है। तो मेरे पास कोई फिल्मी गीत थे नहीं, 3-4 मुखड़े में लेके आया था, तो मैंने उनको सुनाए और काफी इंतजार किया। रास्ता बड़े बिजी थे, हर उन्होंने मुझे अपनी कार्टी में बुलाया। लेकिन गाने से पहले मुझे हिरन खेड़ा साहब ने कहा कि राज साहब तो तुमसे गाने नहीं लिखवाएंगे, लेकिन मैं अगर कभी प्रोड्यूसर बन गया तो मैं तुमसे गीत जरूर लिखवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और देखिए मेरा नसीब कि 2-4 महीने में ही किसी शख्स ने उनको पैसे दे दिए फिल्म बनाने के लिए और उन्होंने बनाई फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ। उसी मिस्टर हिरन खेड़ा ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी जब जब फूल खिले, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा।
0: और इसके बाद से इनकी जो स्ट्रगल थी ये तो जैसे परदेसी हो गई, उससे फिर मुलाकात ही नहीं हो पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: पुरानी चीज आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ only on Mirchi.

0: आनंद बख्शी साहब क्योंकि शायर नहीं गीतकार थे, फिल्मी गीत लिखते थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इस सारे क्रिटिसिज्म को उन्होंने जवाब दिया अपने गानों से, डीप थॉटफुल गाने जैसे कि अमर प्रेम के गाने। अच्छा, इसका जो गाना है चिंगारी कोई भड़के, उसके बारे में सुनिए पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये गाना मैंने फिल्म के लिए ऐसे लिखा नहीं था, ऐसे अपने लिए लिखा था। मैं उन दिनों में तो गाने लिखते रहते थे कि कौन सा गाना किसे पसंद आ जाए क्या पता। तो शाम को हम अक्सर वहाँ बैठते थे, श्रुति सुमन जी के यहाँ, राजेश खन्ना, आर डी बर्मन, मैं। तो हाँ, मैंने ये गाना जब उन्हें सुनाया तो सब लोगों को इतना पसंद आया कि उसका भी से रिकॉर्ड करते हैं और इसकी पिक्चर में निकालते हैं सिचुएशन। और इत्तफाक से वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने भी वो गाना पार्टियों में खूब गाया।
0: बताइए, अक्सर बख्शी साहब को सिचुएशन दी जाती थी गाने लिखने के लिए, ये गाना फिल्म बनाने वालों को इतना पसंद आया कि इसके लिए सिचुएशन निकाली गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची वन ने साथ पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची वन ने साथ पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: पुराने हिंदी फिल्मी गाने, हर दूसरा गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा होता है, कई बार पहला और तीसरा भी उन्होंने ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बख्शी साहब को सिचुएशन दो, 7-8 मिनट में वो गाने लिख देते थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था इस बारे में।
1: ये मैं कोशिश तो करता हूँ, कभी बन जाता है कभी नहीं भी बनता।
0: ऐसा ही एक गाना जो फटाफट बन गया था वो था आन मिलो सजना फिल्म का अच्छा तो हम चलते हैं, जिसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। इस बारे में बख्शी साहब ने क्या कहा था?
1: इन गानों को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये गाने फुकबंदी के हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ से फिल्म राइटिंग का एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें डायलॉग टाइप के गाने भी आते थे।
0: वही बख्शी साहब को उस टाइम इतनी आलोचना का सामना इसलिए भी करना पड़ता था क्योंकि ये शायर नहीं थे, बस गीतकार थे। तब शायरी को या शायरी बेस्ड जो गाने होते थे उनको ज्यादा बेहतर समझा जाता था। एक बार बख्शी साहब से पूछा गया था कि अदबी शायरी और फिल्मी शायरी दोनों में उनके हिसाब से क्या फर्क है।
1: फिल्मी शायरी में और अदबी शायरी में इतने फर्क है कि उनकी मीटर्स अलग होते हैं। जैसे शायरी के 6 मीटर होते हैं, उनकी बहरें होती हैं, उसी बहर में लोग शायरी करते हैं। फिल्म के गीत में जैसी धुन बनती है, धुन पे लिखना पड़ता है, तो धुन का अपना अलग मीटर होता है
0: और उसी के साथ साथ सिचुएशन भी तो होती है जिसके मुताबिक गाना लिखना पड़ता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: अच्छा

0: हिंदी फिल्मों के आइकॉनिक सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई वैसे तो बख्शी साहब बहुत वर्सेटाइल थे, हर तरह के गाने, हर सिचुएशन पे गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एक टाइप था जो उनको काफी पसंद था, वो गाने जिनमें फोक म्यूजिक का टच होता था। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बचपन से ही फोक गीत काफी सुनता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक था, इसलिए फोक गीत मेरी शायरी में भी आते गए। और हालांकि मैंने कोई भी फोक सॉन्ग बिल्कुल कॉपी कभी नहीं किया, खुद लिखा है, लेकिन मेरे कुछ गीत इतने पॉपुलर हुए कि लोगों ने कहा कि भाई ये जरूर कोई ना कोई फोक गीत होगा, और आनंद बख्शी ने वहाँ से गीत कॉपी किया होगा। जैसे ये बिनिया चमकेगी, इसमें जितनी पंजाबी की लाइनें वो सब मैंने लिखी थी, ये किसी भी फोक गीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसे एक अपनी दाद समझता हूँ, कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि ये गीत जो मैंने लिखा वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहना शुरू किया भाई ये जरूर कोई फोक गीत होगा।
0: तो देरी किस बात की है, सुन लेते हैं क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मी गाने लिखना शुरू किया और 2002 में उनकी डेथ तक वो गाने ही लिख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने डेकेड्स तक वो रेलेवेंट थे, ऐसा कैसे कर लेते थे? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैं पहले लिखता था, वैसे अभी लिखता हूँ। मेरे माइंड में शुरू से ही सिचुएशन की जो डिमांड है उसकी बड़ी अहमियत रही कि गाने वाला कोई बोर्डमैन है या कोई आर्टिस्ट है या कोई शायर है या वर्किंग क्लर्क है या कोई किसान है या कौन है।
0: वैसे तो उनके सारे गानों की मेजर मास अपील रहती थी, लेकिन कुछ गाने थे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे। वन ऑफ सच सॉन्ग्स जिसे हम पाथ ब्रेकिंग कह सकते हैं या बाउंड्रीज क्रॉस करने वाला कह सकते हैं, वो है 1986 की नाम फिल्म का चिट्ठी आई है। इसके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन दी, ऐसी जगह दी फिल्म में जिसमें कि एक शख्स अपना देश छोड़ के बाहर गया हुआ है, उसे अपने देश की याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, माँ की याद आ रही है। तो वो फीलिंग लेके मैंने ये सोचा कि अगर चिट्ठी के हिसाब से इसे लिखा जाएगा तो बहुत कामयाब होगा।
0: कामयाब इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची। बड़े

0: लेट 50s में जब आनंद बख्शी साहब ने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया तो उनको इतना वार्म वेलकम नहीं मिला था क्योंकि वो शायर नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट काफी क्रिटिसिज्म, थोड़ा रूखा बर्ताव भी मिला था, लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग राइटर्स भी थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, और उनमें से किन लोगों के काम से वो इम्प्रेस्ड थे, एक बार एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए बख्शी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: फिल्मी शायरी में मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने इम्प्रेस किया वो थे डीएन मरहोक, उन्हें यहाँ कहते थे महाकवि, और उसके बाद अपने शैलेंद्र ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और एक ऐसी शायरी जिसमें अदब भी हो, लिटरेचर भी हो और फिल्मी रंग भी हो, उस टाइप की शायरी अपने साहिर साहब करते थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और वो उन्होंने हौसला दिया, लोगों से मुझे मिलाया कि भाई ये बहुत अच्छा शायर है, इस पर गीत लिखो, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। और शैलेंद्र साहब थे, वो भी मेरी बड़ी तारीफ करते थे। इस तरह से कुछ दोस्त और बन गए, कुछ दोस्तों की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले का करम, अपना सिलसिला वहाँ से चल पड़ा।
0: और हम यहाँ पे चला देते हैं बख्शी साहब का बड़ा अच्छा सा एक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
2: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन. It's hot.
0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: भाई यूं तो आनंद बख्शी साहब के हजारों सुपरहिट गाने रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो कौन सा गाना था या वो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिससे उनको ये एहसास हुआ कि भाई हाँ मेरा ये लिखा गाना सुपरहिट हो गया है?
1: मिलन की वक्त की बात है कि मैं अपना फ्रंटियर मेल से आई वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो रास्ते में अचानक एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पे गाड़ी का हल्ट बनी था, गाड़ी खड़ी हो गई। तो वहाँ आधी रात के वक्त कोई फकीर ऐसे इस हथेली से यहाँ से वो कुछ रिदम बजाता था और वो गाना गा रहा था कि सावन का महीना पवन करे शोर। दैट वॉज अ मोमेंट जब मुझे पता लगा हिट गाना क्या होता है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ये गाना हिट हो गया।
0: वैसे एक और गाना था जो इतना पॉपुलर हुआ कि जिस हीरोइन पे वो पिक्चराइज था, उसकी वो डेब्यू फिल्म थी, उसका नाम उसी गाने पे पड़ गया था।
2: उसी गाने से उसे जीने जमाने के लोग कहने लगे थे शी इज दम और दम गर्ल।
0: आनंद बख्शी साहब के न जाने ऐसे कितने गाने हैं जिन्होंने पता नहीं कितने एक्टर्स को उनकी पहचान दी। हम उन एक्टर्स को शायद उन गानों की वजह से पहचानते हैं जो लिखे बख्शी साहब ने। कोई ऐसी फिल्मी सिचुएशन नहीं रही है जिसको बख्शी साहब ने बख्शा हो, सब पे गाने लिख दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू के साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज, आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
2: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो। 89.3

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

पल पल में शामिल है।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Yeah.

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: 89.6. 89.6.
1: It's hot.